0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GAFM 90.4।
3: शान रिजालत मौला।

आपको देखता हूँ माशाल्लाह, आपको देखता हूँ दिल खुश होता है, पीछे देखता हूँ फिर बड़ा नर्वस हो जाता हूँ। अब आपसे गुजारिश है, जो खामोश बैठा हो उससे पूछ लें कि मौला अली का नारा लग रहा है तेनू खैर से है, क्यों खामोश बैठा है? थोड़ा जा ऊंचा बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, सलामत रहें मिलकर।

ऐसा नारा लगाएं, इलाके वालों को पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बाबा से बुलंद, मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बाबा से बुलंद है।

जितने मौलारी के आशिक बैठे हैं सिर्फ अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं नहीं जानता किधर, सारे ही महफिल वाले। हाँ, ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाए, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समाज फरमाए बाबाजे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलारी के नारे का जवाब देना है। बाबाजे बुलंद, हैदर वर का सकीन कोई देखी।

0: बस खत्म। जो बाहर खड़े हैं वो भी बोल दे
1: वो नारे हैदरी।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। जी FM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिससे मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

साईं मुंहिंजा जेसि ताईं ही दुनिया काम आहे तेसि ताईं ज़िंदगी जो चरखो कॾहिं बि रुकणो नाहे, वक़्तु बि कॾहिं बीहंदो नाहे, इहो पंहिंजे मुक़ररु कयल रफ़्तार सां अॻिते वधंदो रहंदो आहे। ऐं डुख हुजनि या सुख, ग़म हुजनि या ख़ुशियूं, ॾींहुं हुजे या राति, उहे कॾहिं बि रुकणा न आहिनि। इहो अचण ऐं वञण जो अमल आहे ऐं हर राति पुठियां ॾींहुं ऐं हर ॾींहं पुठियां राति आहे। डुखनि पोयां सुख ऐं सुखनि पोयां डुख हूंदा आहिनि। बस रुगो माण्हू पुरअज़म हुजे, हौसले जो हथ न छॾिजे ऐं उन्हनि पीड़नि मां पार ज़रूर करे वेंदो। साईं मुंहिंजा इन ॻाल्हि में ईअं आहे त डुख सुख त अचणा आहिनि, पर कंहिं इंसान जी दिलि डुखाइजे, छो त दिलनि में अलाह रहंदो आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि इंसान जी दिलि डुखाईंदव त अलाह नाराज़ थी पवंदो।

धन्यवाद जी आसमिन प्रोग्राम रोशन सुबह में कुछ दोस्तों जा नाला खणंदा हलंदासीं ऐं पंहिंजो बि जेको आहे बार आहे वज़न आहे उहो बि हल्को कंदा हलंदासीं ॻोठु हसू जतन खां मोहम्मद मूसा जतोई यार मोहम्मद ऐं नसरुल्ला जतोई ॻोठु अहमद ख़ान लाशारी खां नियाज़ अली लाशारी ऐं नंढड़ो शाहज़ेब लाशारी ॻोठु मोले ॾिणे माशी लॻे वॾनि वारनि खां ज़मीर हुसैन सोलंगी मुख्तियार अली ज़हीर अब्बास सोलंगी नंढड़ो वफ़ा हुसैन सोलंगी ॻोठु कंगन खां गुलाब खान कुंभर शोएब अली ऐं गुलाम रसूल कुंभर ॻोठु मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो मोहसिन अकबर अहसन अकबर फहद अकबर अहद अकबर ऐं शादाब चांडियो ॻोठु छुटो मक्सी लॻे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी अकबर खान मक्सी नारा स्टाप लॻे सब्ज़ी मंडी सखर खां एजाज़ अली जुणे जो मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जुणे जो यार मोहम्मद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फ़क़ीर एजाज़ अली कलड़ो डॉक्टर रिज़वान अली कलड़ो माजिद अली जतोई ऐं निसार अली जतोई त दोस्तनि जी वॾी महिरबानी ऐं प्रोग्राम ॿुधंदा रहो इंजॉय कंदा रहो।

ईरान जे परे वज़ीर अब्बास इराग़ची चयो आहे शिकस्त बावजूद अमरीका असांजे अज़म जो इम्तिहान वठण जो फ़ैसिलो कयो। असांजी ताक़त या हथियारबंद फ़ौज कंहिं बि हमले या धमकी जो भरपूर जवाब ॾींदी। फ़ैसिलो महफ़ूज़ रहण चाहियो था त असांजे इलाइक़े मां निकिरी वञो। नॉर्थ फोर्ट जी तयारी तारीख़ी पर मुदाख़लत करण जे ख़राब अंजाम सां भरियल आहे।

0: कॉमिक्स दादी काउंसिल जो इजलास अज थींदो। वफाकी बजट जुमे ॾिहाड़े पेश कई वेंदी। सूबा वफाक जमा ॾियार ते खसारो पूरो करण ते राज़ी। वफाक खे 1200 खां 1700 अरब रूपिया फराहम कया वेंदा। क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट जा इजलास बजट तलब कमिस ॾिहाड़े इख़्तिलाफ़ी सर्वे रिपोर्ट पेश करण जो इम्कान। सेनेटर सलीम मलेवाला चवायत ऐवान सदर में थियल इजलास में समूरा इख़्तिलाफ़ी मामला तय थी विया। चइनी सूबनि वफाक खे घुर्बल 1200 खां 1700 अरब रूपिया ॾियण ते इतफ़ाक़ करे वरितो आहे। उन्हनि पैसनि जी पाकिस्तान खे स्ट्रेटेजिक ख़तरनि खे न करण वफाक जी ज़रूरत हुई। हुकूमत सां को जहिड़ो नए वफाक जो मुतालबो जंहिंजे तरीक़ेकार ते घणो बहस हो। बजट में देर जो कारण गिलगित पाकिस्तान इलेक्शन ऐं सदर ऐं वज़ीर आज़म जी गैर मौजूदगी सबब मुशावरत ऐं मुलाक़ातूं न थी रहियूं आहिनि, जंहिं सबब काफ़ी मामला अटकियल हुआ। तरक़ियाती समेत समूरा मामला तय थी चुका आहिनि। हाणे बजट बि पेश थी वेंदी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATM एंड कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GAFM 90.4।
5: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
6: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252576।
6: जी हा, 2315525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 10:15 AM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: मातली के हो तो आवाज।
0: It's 10:15 AM. This time check is brought to you by
1: D is. It's time to commercial break. तैयार कन, गैर जरूरी तौर ते बाहर न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। बारन, बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। वधीक पाणी पियो ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।
5: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, ई चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: आप सुन रहे हैं,
6: आप सुन रहे हैं
4: GFM.
7: हाँ जी, असमें प्रोग्राम रोशन सुबह आमद पाया GFM 88 जे नेटवर्क का, जिमें सखर, लाड़काणो, मीरपुर खास, मोरो, मेरापुर, सकरंड, मटियारी ए मातली स्टेशन का तवां असो प्रोग्राम पूरी सिंध में, झरझंग में, जबल में, काशे में, कचे में तवां बुधी सको था। मां जो मेज़बान नेमतुल्लाह जूने जो त साईं मुंहिंजा, तव्हां असां सां गॾु गॾु आहियो। हीउ प्रोग्राम मुंहिंजो न पर तव्हां जो आहे, ऐं तव्हां शामिल थी सघो था प्रोग्राम रोशन सुबुह में, ऐं फेसबुक ज़रिए, ऐं इनबॉक्स ज़रिए, ऐं मोबाइल जेका असांजो नंबर आहे लाइव स्टूडियो में नंबर आन आहे, तव्हां कॉल करे पंहिंजा नाला लिखाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332132288। त साईं मुंहिंजा, ॻाल्हि कंदासीं अॼु असां मोबाइल फोन जी। त अॼु जे ज़माने जा माण्हू असां वरी अलाए कीअं थी विया आहियूं, ऐं का ख़बर ई कोन थी पवे त जॾहिं असांजो को पहिरीं प्यारो दोस्त या को मिट माइट असां वटि महिमान थींदो आहे त थोरे मिंटनि में असां हुन खां हाल वाल त मालूम कंदा आहियूं, पर हू पंहिंजी फोन में लॻी वेंदो आहे त असां वरी पंहिंजी मोबाइल खे पंहिंजो प्यार हुन सां गेम खेॾंदासीं, किथे मैसेज चेक कंदासीं, ऐं हर कोई पंहिंजे मुंहुं सां, ऐं थोरनि मिंटनि में ईअं महसूस थींदो आहे त ॼण असांजी सिक ई लही वई। त साईं मुंहिंजा, इन समूरी सूरत हाल खे नज़र रखंदे असां इहो चई सघूं था त मोबाइल फोन असांजे विच में मोहबतनि ऐं कुर्बतनि वारियूं कचहरियूं घटाए छॾियूं आहिनि, ऐं असां हिन वक़्तु जेको अचणु वञणो आहे हिकु वॾे मोबाइल फोन ते असां घुराईंदा आहियूं त अचो असां ॾांहुं चकर ॾेई वञो, या असां फोन कंदा आहियूं त भाउ असां ॾे बिजली कोन्हे का, ऐं तव्हां ॾे जेकॾहिं AC हले थी त असां तव्हां ॾे चकर लॻायूं ऐं वक़्तु पास कयूं ऐं तव्हां ॾे घुमण फिरण अचूं। पर जंहिं साईं मुंहिंजा, जॾहिं वक़्तु लॻंदो हो, सिक लॻंदी ही, उकीर हूंदी ही, उहो दौरु हूंदो हुयो ख़तनि जो, ऐं असां पाण हिकु ॿिए ॾे ख़त लिखी करे हिकु ॿिए खां हाल अहिवाल वठंदा हुआसीं ऐं मालूमात कंदासीं तव्हांजी तबियत कीअं आहे, तव्हां छा पिया कयो, ऐं हिकु ॿिए खे असां पंहिंजो नियापो ऐं जेको ख़त लिखी करे घुराईंदा हुआसीं त उन जी सिक ऐं उकीर तमामु घणी हूंदी हुई।

जी हा समय प्रोग्राम रोशन सुबुह में कुछ दोस्तन जा नाला आहिनि जेके अव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। ॻोठ जांवरी चौक ॻोठ यारमम जांवरी खां अली ॾिनो जांवरी, रईस मुश्ताक जांवरी ऐं अब्दुल नबी लंजवाणी, ऐं झंडे मरी खां कुर्बान अली खासकेली, इनायत अली खासकेली, ऐं ॻोठ गुलाम हुसैन जलालाणी खां नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी ऐं महबूब नाज़ जलालाणी, मोहम्मद असलम मुख़्तियार जलालाणी ऐं बदीन खां नूर हुसैन तुनियो, ऐं ॻोठ सचीरनो मंगरियो लॻे बकाबुर खां सोराब अली मंगरियो, फरन अली मंगरियो ऐं अब्दुल बासित मंगरियो, आसिफ अली चाचड़ वासिफ अली भुगती लाड़काणे खां, ऐं ख़ालिक लाशारी मीरपुर ख़ासि खां, ऐं मीरपुर ख़ासि खां ई मोहम्मद अज़ीज़ जरवार, ॻोठ पुनू पांवर लॻे सेवण खां रुस्तम अली पांवर, आमिर हुसैन भुट्टो माए वाइफ माए नोश भुट्टो ऐं असलम अरब भुट्टो, ॻोठ खुदरनो भुट्टो माहौटन खां, ऐं रांझन कोरी कोरी ॻोठ मीरपुर ख़ासि खां, साईं जी वॾी महिरबानी। आसिफ नवाज़ महर कचे लॻे चक खां भाउ फोन कई, भाउ जी वॾी महिरबानी। ऐं यासमीन मलक मीरपुर ख़ासि खां, ऐं चनेसर बिहण आज़ाद बिहण मोरे खां, ॿाहिरनि जी वॾी महिरबानी। सलमा आगा जो ख़ूबसूरत नगमो आहे, अवां दोस्तनि नाम पिया कयूं।

जी आसमिन प्रोग्राम रोशन सुबह जारी उसारी है तुम जो असो साथ रहो ठीक यारह वगे तई तवाजा अना नाला खुश नगमा जरूर अवे बुधाइंदी तेस दिन कर हलूँ पे वक्त कमर्शियल ब्रेक की तरफ।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वजह।
3: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
4: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज,
5: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
6: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
7: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
5: सुनते रहो GFM 90.4।
9: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
10: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
10: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
9: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
10: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा।
9: 0331252578
10: जी हाँ, बुड़ी 231-5-5-786
9: GAFM रेडियो नेटवर्क
10: सिंध जो आवाज।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

साईं जा असां ॻाल्हि कंदासीं जेके प्रोग्राम जा आख़िरी लम्हा आहिनि, आख़िरी लम्हनि में असां उन्हनि गवर्नमेंट मुलाज़िमनि जी बि ॻाल्हि कंदासीं जेके वफ़ाक में आहिनि या जेके सूबे में आहिनि। त जेके सूबे में आहिनि, वफ़ाक में आहिनि, उन्हनि खे इंतज़ार हूंदो नई बजेट जो, ऐं नई बजेट में हुननि खे इहो ई इंतज़ार हूंदो आहे त असांजी पघार घणा सैकड़ो वधंदी। ख़ैर बहरहाल कुझु दोस्त आहिनि जंहिंजा नाला बि खणंदासीं, हुन खे बि इंतज़ार आहे पंहिंजे नालनि ॿुधण जो। त अलीशा सुमरो सखर खां प्रोग्राम ॿुधे पई, भेण जी वॾी महिरबानी। इमाम दीन ट्रगड़, नूरदीन ट्रगड़ ऐं फरहान अली ट्रगड़, राजा खान ट्रगड़ ॻोठ, ही सभु चांडियो खां। ऐं असांजा दोस्त आहिनि महबूब शर, रिज़वान शर, इमरान शर, नंढड़ी उज़मा ऐं असमा शर, ठरी मीरवा खां, मोहम्मद नवाज़ मंगी, सोहेल मंगी ऐं सोना खान मंगी, गुडू जान मंगी ॻोठ ट्रगड़नि खां प्रोग्राम ॿुधनि पिया, भाइरनि जी वॾी महिरबानी। ऐं नंढड़ो अरसलान, नंढड़ो सकलेन ऐं नंढड़ो असलम भुटो ॻोठ खुतरनो भुटो लॻे माहौटनि खां। ऐं असांजो दोस्त अज़ीज़ सोलंगी ऐं भुटो सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां प्रोग्राम ॿुधनि पिया। ऐं भाइर असांजा वकार जतोई ऐं इद्रीस पांवर ऐं प्रदीप कुमार प्रोग्राम ॿुधनि पिया ॻोठ पीरशहर लाड़काणे खां, भाइरनि जी वॾी महिरबानी। ऐं प्रोग्राम जो आख़िरी नगमो अव्हां दोस्तनि जे नाम।

0: रहे हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
1: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
2: जी हा, 2315525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: Have you ever used a proxy server?
1: जी ब्यूटीफुल सॉन्ग और ब्यूटीफुल सॉन्ग के साथ साथ आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में, और प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे। इसके अलावा आप लोग मुझे सिंपली कमेंट भी कर सकते हैं, तो कमेंट करने के लिए GFM88 के पेज के ऊपर आने के बाद आपको मिलती है एक अदद पोस्ट जिंदगी गुलजार है की, उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488, इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के बाद मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और ये तीनों तरीका कार जिससे आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कॉल्स हैं आप लोगों की दो अलग सेगमेंट में रिसीव की जाएंगी। अच्छा, वो लोग जो कि डेली बेसिस पे एक ही कॉल कर रहे होते हैं, मतलब एक ही बंदा बार बार कॉल कर रहा होता है, तो इस चीज से थोड़ा सा अवॉइड करेंगे हम, ठीक है। और हम डेली बेसिस पे जो भी कॉलर्स आते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि डेली बेसिस पे सेम कॉलर्स ना आए। अगर आते हैं तो मैं इसीलिए पहले से बता रही हूं कि अगर डेली बेसिस पे सेम कॉलर्स आएंगे तो उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा जो कभी कभार कॉल करते हैं या डेली वो भी ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन उनकी नहीं लग पाती, जिनकी लगती नहीं है कभी, ठीक है। तो ये चीज है, इस चीज को देखते हुए सेम कॉलर्स इज नॉट अलाउड, ठीक है। और अगर मेरे बताने के बावजूद भी आप लोग कॉल करते हैं और उस पर अमल नहीं करते हैं तो मैं आउट करने में एक देर नहीं लगाऊंगी, ठीक है। तो ये सीन है, और दो सेगमेंट्स होंगे हमारे, जिसमें से पहला सेगमेंट होगा सुर लगाओ गाना सुनाओ, जिसमें कॉलर आएगा गाना सुनाएगा, उसका गाना उसी टाइम पे प्ले कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जी हमारा दूसरा सेगमेंट होगा दैट इज बोलो तो माने, बोलो तो माने में एक अदर टंग ट्विस्टर आपको बताया जाता है। टंग ट्विस्टर जो आपको बताया जाता है वो आप लोग कह के दिखा रहे होते हैं, और जब वो आप कह के दिखाते हैं देन वो टंग ट्विस्टर जो बंदा सही सही बोलेगा, अच्छा अच्छा बोलेगा, जल्दी जल्दी बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा बोलेगा, वो विन कर जाएगा उस सेगमेंट को, ठीक है। तो ये सीन है, और इस सीन के साथ साथ स्ट्रिंग्स का ये गाना इसी के साथ हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ भी चलेंगे और वापस आएंगे एक अदद ब्रेक के बाद। सो ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे ना तो फिर हम अपना अगला सेगमेंट स्टार्ट करेंगे दैट इज बोलो तो माने। स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
3: छावां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे,
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: इंतजार अमोर मेरा मुझे
1: ओके जी, क्या टाइटल है इस गाने का?
0: इंतजार बराबर
1: इंतजार कोई सिंगर क्या है, सिंगर कौन? ओके मैं सर्च करती हूँ जी, और कुछ कहना है?
0: हमारे दोस्त हैं मोहम्मद ताहिर साहब, आपके सामने साहब सैयद मिर्ज़ा बुखारी साहब, और मोरो पे प्रोग्राम कनेक्ट कराओ।
1: मोरो पे कनेक्ट नहीं है, अभी करवाते हैं जी, अभी चेक करते हैं क्यों कनेक्ट नहीं है। ओके अल्लाह हाफिज, थैंक यू। और 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग, सो कॉल कीजिए। एंड नेक्स्ट कॉलर, हेलो
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
2: गाजी खान रिंद गुलाबली गाड़ी से।
1: गाजी खान रिंद भाई, कैसे ठीक ठाक?
2: और कर कह रहे थे
1: जी, खैर खैरियत है। मुझे बताइए गा के प्रोग्राम सुन रहे हैं?
2: हाँ जी प्रोग्राम सुन रहे हैं।
1: प्रोग्राम सुन रहे हैं, ओके तो मुझे बताएं कि गाना सुनाएंगे?
2: हाँ जी बिल्कुल सुनाएंगे,
1: सुना दे।
2: चिल्लंदे चिल्लंदे हाथ में डाल के फेरा, चिल्लंदे चिल्लंदे हाथ में डाल के फेरा, दाल के तेराइन जिगर मोन जो जलाइन, खिलंदे खिलंदे साथ रे दाल के तेराइन, तानू हो जन को तीर हो जानी दिल मते को जीर हो, तानू हो जन को तीर हो दिल मते जानी जीर हो, करण देरो मेनू दे गल के तेरा।
1: ओके किस सिंगर का गाना है
2: ये? मुमताज मौलाई।
1: ओके मुमताज मौलाई का गाना प्ले कर रहे हैं, और किसको डेडिकेट करेंगे?
2: ये मेरा चाचा मंच पाल रामदेव।
1: ओके थैंक यू सो मच। और गाना ये रहा, और ये अब चलेगा, चल गया है थोड़ा सा आगे से चलाएंगे यहाँ से, ठीक है।

जी आज का टंग ट्विस्टर मैं आपको बताने लगी हूँ. आज का टंग ट्विस्टर जो कि आपने कह के दिखाना है, आपने कहना है कि सुमेरा ने सरसब सड़क से सजे सुनहरे सपने सवारे. ठीक है, ये कहना है. सुमेरा ने सरसब सड़क से सजे सुनहरे सपने सवारे. इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, क्योंकि अगला जो हमारा सेगमेंट आने वाला है उसका नाम है बोलो तो माने. उसमें आप ये कह के दिखाएंगे, और उसमें जब ये आप कह के दिखाएंगे तो

इसी के साथ हम एक और गाना भी प्ले करेंगे और उस एक गाने के साथ हम जाएंगे एक अदद न्यूज ब्रेक और फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक. दोनों के बाद वापस आएंगे. आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और गाना हम प्ले करने जा रहे हैं मुस्तफा जाहिद की आवाज में. उसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे.

बाबति कुझ बि तब्दील न आहे थियो वेझो आहियूं। क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल जो इजलास अॼु थींदो। वफ़ाक़ी बजट जुमे ॾिहाड़े पेश कई वेंदी। सूबा वफ़ाक़ जो मालियाती खसारो पूरो करण ते राज़ी। वफ़ाक़ खे 1200 खां 1700 अरब रुपया फराहम कया वेंदा। क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट जा इजलास बि अॼु तलब थियल। खमस ॾिहाड़े इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश करण जो इम्कान। सिंध में पाणी बहरान संगीन थी पियो। पंजाब वाद पाणी खणण वारे होड ते क़ाइम। सिंध जे हिसे मां 50,000 क्यूसिक पाणी वधीक खणण लॻो। गुडू सखर ऐं कोटी बैराज कैनाल में ज़री पाणी शिदत खोट बरक़रार। कोटली वटि 57, गुडू वटि 30 ऐं सखर वटि 39% पाणी जी खोट रिकॉर्ड। गुडू बैराज, सखर बैराज ऐं कोटली बैराज जे फीडर्स में पाणी शिदत खोट। पोखियल फसल पाणी न मिलण सबबि सड़ण लॻा। आबाद करण पारां पाणी छोड़ करण जो मुतालबो।

0: मीरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम। यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: ओके जी, कॉल्स को आप लोग एंटरटेन करेंगे. कॉल्स आना हमें शुरू हो चुके हैं 03000113488. इसके ऊपर कॉल करेंगे और कॉलर कोई भी रिपीट ना हो ये ख्याल कीजिएगा. अगर तो कोई कॉलर रिपीट होता है तो उसकी कॉल जो है ड्रॉप कर दी जाएगी. ठीक है, सो कॉलर हम रिसीव करेंगे एंड फर्स्ट कॉलर ऑफ दैट सेगमेंट. हेलो. ओके जी, हेलो. एक और ट्राई करेंगे. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं सागर बात कर रहा हूँ.
0: सागर भाई, कैसे? ठीक ठाक.
1: कैरियर कैरियर खैर तो है. मैंने 11 तक करीब कॉल किया और कॉल आपने अटेंड भी कर दिया. अभी तो पूरे आधा घंटा कॉल चलती रही है. मैं बात नहीं ना करते
0: आधा घंटा चलती रही है.
1: हाँ, चलती रही. मेरे को कॉल ड्रॉप नहीं थी, बंद नहीं थी. मेरे को कैसे कहाँ तक चलती है कॉल?
0: पैकेज होगा ना आपका?
1: पैकेज कैसे का नहीं होता है.
0: अच्छा, घंटे मतलब घंटे वाला पैकेज अलग होता है?
1: नहीं नहीं, घंटे वाला मंथ वाला मंथली है.
0: अच्छा, मंथली पैकेज होता है ना. तो फिर आपको क्या टेंशन है, आधा घंटा चले, एक घंटा चले. और हमें तो पता भी नहीं चलता कि सिस्टम कब किसकी कॉल रिसीव कर लेता है और देन फिर उसको जाते हैं.
1: चलिए, चलती रही है. 11 तक क्या जो आपने कॉल अटेंड की है और चलती रही है.
0: चले, कोई बात नहीं, चलती रही है. तो वैसे भी पैकेज है ना, अगर बैलेंस होता ना तब मैं आपसे माजरत करती लेकिन आपका बैलेंस था तो मैं आपसे माजरत नहीं करूंगी. अच्छा, मुझे ये बताएं कि टंग ट्विस्टर सुनाएं, बोलेंगे
1: टंग ट्विस्टर क्या है? टंग ट्विस्टर
0: क्या है? ओके, मैं बताती हूँ जी, बताती हूँ. थैंक यू. सुमेरा ने सर सर सड़क से सजे सुनहरे सपने सवारे.
1: सुमेरा ने सर सड़क पर
0: सड़क से सजे
1: सड़क से सजे सजे सपने सवारे
0: सुनहरे सपने सवारे
1: सपने सवारे देखा तुम सड़क पर. मेरा सड़क पर सड़क पर सके सपने सवारे मेरा
0: वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है. आप तो छा गए, आ गए तो छा गए.
1: क्या बजे कल भी आपने ना गाना सुनाया मेरा. आज आज आधा घंटा पूरा वेट कर दिया.
0: चले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखिए अपना. अल्लाह हाफिज. ठीक है सागर भाई. ओके जी, अल्लाह हाफिज. और इसके अलावा ये क्या हो गया, हमने तो कुछ और प्ले किया था. अच्छा, सागर भाई का ये जो आधा घंटा जाया हुआ है, खैर कॉल ड्रॉप हो गई उनकी, मैं कहने वाली थी तो जब आपने देखा कि मैं न्यूज ब्रेक पे चली गई तो आपने कॉल काट देनी थी ना. आपने आधा घंटा क्यों चला के रखी है ना, तो आपका आधा घंटा बच जाता. अच्छा, 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग. और इसके अलावा जी कॉल्स लूंगी मैं आप लोगों की साथ साथ. नेक्स्ट कॉल है. हेलो. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं? अली मोहम्मद. ओके, पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
1: जी बाजी,
0: पहली दफा कॉल कर रहे हैं? ओके, कहाँ से बात कर रहे हैं? ओके, कॉल ड्रॉप हो गई जी, कॉल ड्रॉप हो गई. 03000113488 नेक्स्ट कॉलर. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं? वकार जतोई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं।
1: आराम सुनाए, आप कैसी हैं?
0: जी मैं बहुत अच्छी हूँ। टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगे
1: जी। टंग ट्विस्टर नहीं सुना, लेकिन आपका प्रोग्राम सुनाए, आप बताओ तो हम बोलेंगे।
0: मैं बताऊँ तो बोलेंगे
1: जी। जी
0: सुमेरा ने सरसब सड़क से सजे सुनहरे सपने सवारे। मुश्किल है,
1: तकलीफ माफ करो, रुखसार था शो पसंद मतलब
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू। और कुछ कहना है?
1: नहीं बस आप खुश रहे। ओके
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ चलेंगे। क्या हो गया मुझे?

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ बी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बी और जदीद माइक्रोबीट फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। बी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुन 30.4
3: पेंजे गड़की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए जीए एफएम 90.4 मातली बदी निक एड़ो एफएम रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576
4: जी हाँ 2315525786
3: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 94।

चार दिना दा मेला ए दुनिया फिर मिट्टी दी ढेरी। बाबा बुल्ले शाह का शेर लिखा है, वाह क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। ओके इसी के साथ हम सॉन्ग प्ले करने जा रहे हैं जी नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। इसके खत्म होने के बाद करेंगे।

0: It's time to commercial break.
1: हजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: Okay, so welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार और गाना बहुत खूबसूरत है जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है. और इसके अलावा जी आज से लकी कॉलर्स को भी एंटरटेन करेंगे और आज के बोलो तुम्हारे सेगमेंट के जो विनर है ना वो है सागर. सागर ने बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर कहके दिखाया और उन्होंने काफी ज्यादा अच्छा टंग ट्विस्टर कहके दिखाया. सो और क्या और 03000113488 जिसके ऊपर कॉल करके लास्ट लकी कॉलर बनने का जो ये मौका है ना ये आपने बिल्कुल गंवाना नहीं है. ओके जी नेक्स्ट कॉलर. हेलो वालेकुम अस्सलाम. मैं बहुत अच्छी हूँ आप कैसे हैं? अच्छा मुझे बताएं कि प्रोग्राम सुन रहे
1: हैं?
0: प्रोग्राम सुन रहे हैं जबरदस्त. अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि आज की अच्छी बात क्या है?
1: आज की अच्छी बात
0: यस मेरा
1: प्रोग्राम
0: अच्छा उससे पहले नहीं सुन रहे थे?
1: नहीं सुन रहा था पहले. मैंने फर्स्ट टाइम मेरे कॉल किए मेरी बड़ी मुश्किल में लग गए.
0: ओके
1: और उस टाइम मैं समाज से बात कर रहा
0: हूँ. ओके ये आज की अच्छी बात है. थैंक यू सो मच.

0: सच कि आपने एक हफ्ते से मेरा शो सुनना स्टार्ट किया है और सुन रहे हैं, कॉल की है, थैंक यू सो मच। और कुछ कहेंगे?
1: शुक्रिया।
0: कौन सा? अरे बॉलीवुड कंटेंट तो हम चलाते ही नहीं है ना, बॉलीवुड कंटेंट हम नहीं चलाते, ये बॉलीवुड का सॉन्ग है। कोई पाकिस्तानी गाना बताएं। मुमताज मौलाई का चला देंगे। ओके ठीक है, और कुछ कहेंगे?
1: आपकी आवाज़
0: अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।

47 सैकड़ो पानी की खोट रिकॉर्ड गुडू बैराज सखर बैराज ए कोटी बैराज फीडर्स में पानी की शदीद खोट फसल सबब पानी सब न हुजण सबब सुकण लगा। आबादगारनि जा मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा वारा सिजावत मीरपुर भठौर में आबादगारनि जा मुज़ाहिरा धरना शाखनि में पाणी छोड़ करे फसल बचाइण जो मुतालबो। केबी में दहशतगर्दनि जे हमले में शहीद थियल एफ सी जे छह अहलकारनि जे नादरी मौत अदाज नादरी मौत में घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं ॿियनि शिरकत कई। मोहसिन नक़वी चयो शहीदनि जूं क़ुर्बानीयूं सदाई यादि रखियूं वेंदियूं, दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं कार्रवायूं जारी रहंदियूं। सिंध में कहर जी गर्मी बरकरार, हैदराबाद में गर्मी वगे एक जणो फौत। सिज जी तपिश सबब शहरी सख्त परेशान, हैदराबाद में सख्त गर्मी ऐं हीट फ्लू सबब एबटाबाद वासी एक मुसाफिर मोहम्मद नज़ाकत फौत थी पियो। पुलिस मौजिब फौती सलावट पाड़े जे हिक मस्जिद में गर्मी खां बचाव लाइ तरसियल हो। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेंद्राबाद, सखर, डाडकाणी डिवीज़न में गर्मी जी लहर बरकरार, बिजली जी बंदि सबब शहरी सख्त परेशान। शाहपुर चाकरबर सां पाणी जे वारे ते वियल नौजवान बेतरतीअ सां क़तल, लाश फसल मां मिलियो। इस्माइल मरी खे कुआड़ियुनि जा वार करे क़तल कयो वियो। मक़ामी पुलिस वाके वारे हंधि पहुची लाश कानूनी कार्रवाई लाइ इस्पताल मुंतकिल कयो। क़तल जो कारण मालूम न थी सघियो। हैदराबाद, लाड़काणो ऐं नशोफोज में पुलिस में भर्ती थियल पासकनि ख़िलाफ़ एहतजाज, उमेदवारनि जो मेरिट तहत नौकरियूं ॾियण जो मुतालबो। उमेदवारनि जो रिश्वतखोरी

ओके जनाब, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी नात यहाँ पर आपने एंजॉय करी। इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपके सिद्धर आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं और जनाब अपने होने का एहसास लाते जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं जरा आप लोगों को बताऊंगी कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक क्या होगा। ओके जी, तो आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है वो बिल्कुल ये होगा कि आप मुझे बताएंगे वो कौन सा फल है जो कभी नहीं पकता। बिल्कुल जी, बहुत सारे फल हैं जो कि पक जाते हैं, पकने के बाद ही आप खाते हैं, लेकिन आप मुझे बताएंगे वो कौन सा फल है जो कभी भी नहीं पकता। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा फेसबुक पेज है और जी लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करते हैं तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। और जैसे ही आप हमारे पेज पर आते हैं तो वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट भी मिल जाती है। तो बिल्कुल जी आ जाइए हमारे पोस्ट पर और साथ ही साथ पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, दोस्तों को मेंशन कीजिए, दोस्तों के साथ हमारी पोस्ट को शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल सके कि मार्केट में आ चुके हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट, आप लगाएंगे और खूबसूरत हो जाएंगे। और मुझे बताइए कि वो कौन सा फल है जो कभी भी नहीं पकता। ओके जी, टॉपिक को फॉलो कीजिए और साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को मैं बताती हूँ कि खूबसूरती के राज जो हैं वो कहाँ छुपे हुए हैं। अक्सर हम जो है ना वो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते और वो थोड़ी सी गलती हमारी भी होती है क्योंकि हम उन चीजों को जानने की कोशिश ही नहीं करते। तो चीजें जो होती ना वो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, बस आप लोगों की थोड़ी समझ ये चीजें हैं कि समझ में आनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है और चीजों को समझने की कोशिश किया करें। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आप लोगों की ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए मार्केट में अवेलेबल है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो अगर हम यहाँ पर तफसील से आप लोगों को बताएं तो आप लोगों के लिए जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में वो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कितने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो उसकी जानिब आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपको मिल रही है व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कि नाइट क्रीम है, और उसके बाद आपको डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब मिल रहा है जो कि व्हाइट एज वालों का ही है, उसके बाद व्हाइट एज ब्यूटी सोप आपको मिल रहा है, व्हाइट एज आपको फेस वॉश मिल रहा है, और उसके बाद आपको व्हाइट एज लवली क्रीम मिल रही है जो कि फेयरनेस क्रीम है, और आप लोगों के लिए व्हाइट एज वालों का लोशन भी है, हेयर रिमूवल लोशन भी है जो कि 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर मौजूद है। ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप आसानी जाकर अपने करीबी जनरल स्टोर से परचेज कर सकते हैं। नहीं मिल रहे तो उसके लिए भी आपको नंबर बताया जा रहा है प्रोग्राम में, जिसके ऊपर आप रابطہ करके इजीली जो है ना अपने एरिया में अवेलेबल करा रहे हैं। और उससे ये फायदा होता है कि भाई आप लोगों को कहीं दूर दराज नहीं जाना पड़ता, आपको ये इंतजार नहीं करना पड़ता कि भाई हम अगर मार्केट जाएंगे तभी परचेज करेंगे, नहीं भाई आपके करीबी जनरल स्टोर पर भी अवेलेबल होने चाहिए, उसके लिए आप इंतजार नहीं करेंगे, आप बस डायल करेंगे 03-15-799-0595। तो ये नंबर आप डायल कीजिए ताकि आपके एरिया में, आपके करीबी गोट में, आपके सिटी में, आपके करीबी जितने भी जनरल स्टोर हैं सारों के ऊपर ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएं। और ये प्रोडक्ट्स हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ओके जी, तो डायल करती रहिए 03-15-799-0595, जल्दी से नंबर डायल कीजिए और मुझे बताइए कि आपके एरिया में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ओके जी, मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया है कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा फल है जो कभी भी नहीं पकता, ठीक है। और आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप बताएं कैसे हैं। लिखते हैं कि ना समझी सगिया सी वडा वेर पंजा, अथिया केर दुश्मन बणिया केर पंजा, असां जे चमन जो खयासी जे पेरा मिलिया पेर पंजा। वाह वाह वाह वाह। बख्तली सियाल हमारे साथ मौजूद है और बख्तली सियाल भाई आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान शहजाद हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम इमरान शहजाद। हिदायतुल्लाह अहमदानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद कहते हैं। रुखसाना लाशारी हमारे साथ हैं, आपको भी रुखसाना हम वेलकम करते हैं। आपने सखावत राजपर को सलाम दिए हैं, बहुत शुक्रिया। और वासु भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वासु भाई आपको खुश आमदीद कहते हैं। मोलाई मुजाहिद बोजार हमारे साथ हैं, ठूप चूसल से मोलाई मुजाहिद बोजार कहते हैं कि आप कैसी हैं, आप ठीक ठाक होंगी। जी जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमेशा आपके चेहरे पर हंसी मुस्कुराहट ऐसे ही रखे, आमीन जी आमीन, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए। और दर्द दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम असलम दीदी चंदा,
कैसी हैं आप? वेलकम टू शो प्यारी जानी. आपको भी खुश आमदीद कहते हैं मेरी प्यारी स्वीटी सी परी. और उसके अलावा क्या कहती हैं, आपने बहुत ही अच्छा सा एक मैसेज भेजा है. लिखती हैं, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता मगर मजबूत लोग हमेशा याद रहते हैं. बस हिम्मत रखें और चलते रहें. जो आज सबर कर रहा है कल वही कामयाब होगा. क्या बात है जी, बहुत बेहतरीन. और दर्द दिल कहती हैं कि चंदा, अलीजा और मैं आपका शो सुन रही हैं. बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया दोनों परियों का. और ये हमारे साथ लाहुती साजन चांडियो भी मौजूद है. लाहुती साजन चांडियो, आपको भी खुशामदीद करते हैं. और किशोर भाई आ चुके हैं. सलाम अदा खुश आयो. यस, तव्हांजो अदा खुश आहे, तव्हां अदा कीअं? इनफैक्ट ॿुधायो, मुंहिंजो अदा कीअं? अरसमा मंगोला भाई हमारे साथ हैं. जेकब आबासी आप हमें सुन रहे हैं. कहते हैं जबरदस्त प्रोग्राम, कंपेयरिंग नाइस, थैंक यू. और हिदायतुल्लाह कहते हैं, डॉक्टर ने तारीफ की कमी बताई है, थोड़ी थोड़ी कर दो, कहीं मर ना जाऊं. नहीं नहीं, आप मरेंगे नहीं, थोड़ी सी करेंगे आपकी तारीफ. और ये हैं आदिल, कहते हैं सिद्रा सवाल रिपीट करें. सवाल मैंने पूछा है कि मुझे बताएं कि वो कौन सा फल है जो पकता नहीं.

0: ओके जी, फराज अली बिरोही भाई भी हमारा शो सुन रहे हैं, कहते हैं सो गुड शो, थैंक यू। एस खानी हमारे साथ है, एस खानी, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे सिद्रा, आप क्यूट हैं। सिद्रा आपका शो के नंबर क्या है आप ये बता दें। शो के नंबर है जनाब 03-15-799-0595, इस नंबर के ऊपर आप रब्ता कीजिए, ठीक है। और उसके अलावा आपको कहते हैं वेलकम, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, दोस्तों को मेंशन करते जाइए, यहाँ पर टाइम हो जाता है। हम ना शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं और उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाते जाइए खूबसूरत होते जाइए।
1: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।
2: जुआनी तेरी यार।

0: 400 चाहिए बाबा 400 चाहिए जल्दी ॿुधायो मूंखे। हुन खां अलावा हमारे साथ ज़ाहिद चांदियो ज्वाइन करे चुके कहिड़ी असलाम वालेकुम अदी वॾी टाइम खां पोइ अवांजो आवाज़ ॿुधो आहे ख़ुशि हुजो भेण मोहबतूं प्यारे भाजू तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया इलाही सुठो लॻो। लखमीर अबड़ो हमारे साथ मौजूद आहे वालेकुम अस्सलाम अलैहिस्सलाम अदा लखमीर अबड़ो कराची से हमारे साथ मैं बिल्कुल ठीक ठाक कहते हैं कि अल्लाह पाक से दुआ है कि हमेशा की तरह खुश और आबाद रहे। शमन का गाना तो सुनाएगा बिल्कुल जी आपका गाना लगाते हैं और तमाम सखर वारन के डेडिकेट कयो आ गानो ओके हो गया जी। आदिल तमाम टॉपिक जो जवाब देना है ठीक हो गया। एस खानी हमारे साथ सवाल जो जवाब देना है तमाम भी ठीक हो गया। अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ है। अच्छा आदिल तमाम कैसे भी कमेंट में नहीं कहीं रिप्लाई न जो ठीक है।
1: बापो जमींदार
0: बैड मैनर्स आहिनि इहे समझो था। वासव भाई हमारे साथ हैं कहिड़ी अधी गानो ॿुधराइजो। शमन जो गानो हलाईंदासीं पर दिलि जा बादशाह वारो हलाईंदासीं ठीक आहे सो इंजॉय कंदासीं। शहबाज भी असां सां गॾु मौजूद आहे। हेलो मोलाई मुजाहिद कहते हैं सिडो जी टॉपिक का जवाब है ओके ओके ओके। इकबाल आशारी हमारे साथ मौजूद है कहते बाजी सिदरा सवाल जो जवाब आ है ठीक आई वरी लेमन भी चाहिए था ओके ओके जी ओके। और ये हमारे साथ हैं उदास लड़की क्या बात है उदास लड़की कहते हैं थीवियो डंडन हम भी आज साथ हैं थोड़ा थोड़ा क्योंकि नेट ठीक नहीं है मेरा। चले नेट आप ठीक करवाइए अपना ताकि आप प्रॉपर तरीके से हमारे प्रोग्राम का ऐसा बन सके। ये थोड़ा थोड़ा सफा मजदूर न छोड़े बाबा सही तरीके से प्रोग्राम में शामिल थे। और क्या कहती है सब सुठी गाल माशाल्लाह। और आपने जवाब दिया है जो कि ठीक है। अच्छा अमानुल्लाह चगड़ भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं नौशरो फेरोज से शो उम्दा सवाल का जवाब है ओके।

हां जी ये कहते हैं भाजी अवां जे शो में शामिल थींदी असा के गुलाब जे गुल जी खुशबू महसूस थींदी आ छा भला वो गुल तवां त नायो लाड़कना से इमरान अली बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद है अल्लाह भा खबर त पवे कोन थी दादू का इमदाद जतोई हमारे साथ ही अब्दुल खालिक जतोई मुबशर हुसैन जतोई किफायत अल्लाह जतोई फारूक हैदर जतोई भी असा सगड़ मौजूद है मोहब्बत वान भाई रे तवां जो और ये हमारे साथ हैं जन्नत के अच्छा जी जन्नत आप मुझे कह रही हैं और आप हमारे साथ हैं कौसर कहती हैं मुझे सॉन्ग तो सुनाइएगा गानो बिल्कुल तवां जो हलायो पर अल्लाह

0: गानो आमा दिसां थी ओ मिलियो त हलाईंदासी। अब्दुल्ला महरी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, वाइट एज ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है। टॉपिक है बाजी, ऐसा तो कोई फल है ही नहीं। एक पोएट्री है कि हम जब बुरा वक्त हमें हम पर जब बुरा वक्त आता है तो ये पता चलता है कि कौन कौन अपना है। या तो बाजी शुएब महर और फरीद महर, सज्जाद महर शो आपका सुन रहे हैं। आपकी बुधाई नांजे लाए मौजूद आए आई हर तरह जो प्रोडक्ट तवां चले मौजूद आए, खास करे जेके मानु मुखे चवना है ना तो बाजी असा क्रीम नाए होनदा, बाजी असा ही नाए होनदा, बाजी असा लाए ही वारो प्रोडक्ट हुजन घुर्जे। तो वाइट एज वारन तवां चले यानी कि हर एक मानु चले हर तरह जो प्रोडक्ट आयो आहे या बिल्कुल कामयाबी आहे। तो तमाम सबनी मानन जे जेको ना मसलन के डिसी करे हनन प्रोडक्ट तैयार कया है, जेमे तमाम जलाए नाइट क्रीम भी आहे, फेयरनेस क्रीम भी आहे, एक्नी ट्यूब भी आहे, साबुन भी आहे, फेस वॉश भी आहे, साता समझो एडा मजेदार प्रोडक्ट्स आन जेके तमाम इस्तेमाल करना ते तमाम के खबर पेजी वेंदी। अगर तमाम वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करन चाहियो था तो तमाम पांजे करीबी जनरल स्टोर ते वणो तो मालूमात वठो, मिलन था तो वठी जो, न था मिलन तो पोई तमाम डायल कयो था जनाब 03-15-799-0595 ठीक है, ही नंबर लाजमी डायल करना कयो। उनका अलावा वाइट एज ब्यूटी क्रीम अगर तमा इस्तेमाल कयो पया तो वाइट एज ब्यूटी क्रीम जेका है जल्द तमा जी जेका ने सफा सोनी बनाए छदी, तमा जी खूबसूरती के निखारण ला तमाम जबरदस्त इकड़ी ये नाइट क्रीम तैयार कई थौ जेका तमा जी स्किन ते जेको ना पंजन डीहन में सफा वीआईपी रिजल्ट आने छदी, जेंजी अंदर एवोकाडो मौजूद आ, एलोवेरा मौजूद आ, आई खीर मौजूद आ, ही सब नेचुरल चीजू आ जेके तमा जी स्किन जलाए डाडी जरूरी होंदी आ। एलोवेरा भी तमा जी स्किन जलाए जरूरी होंदी आ, मिल्क भी जरूरी होंदो आ, आई एवोकाडो भी जरूरी होंद है। सो ही उ चीजू आज जी तवी स्किन के लिए जरूरी है। मां वरी तवे बुधाया थी तो वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो छो तो वाइट एज ब्यूटी क्रीम तवी स्किन के सफा गोरो चिटो वीआईपी बनाए छी, जे मू पी स्किन की जी ना स्किन की हमेशा फ्रेश रखन चाहन था, फेयर रखन चाहन था, ब्राइट रखन चाहन था, उहे सब माण्हू वाइट एश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करण वारा आहिनि। सो वाइट एश ब्यूटी क्रीम तव्हां इस्तेमाल कंदा नाइट क्रीम आहे जेका तव्हां राति जे टाइम इस्तेमाल करे सघो था। उन खां अलावा अगरि असां ॻाल्हि कयूं साबुणनि जी ऐं फेस वॉश जी त बिल्कुल जेके माण्हू साबुण हणंदा त उन जे लाइ वाइट एश ब्यूटी सोप मौजूद आहे, ऐं जेके माण्हू फेस वॉश हणंदा उन जे लाइ वाइट एश फेस वॉश मौजूद आहे। त साबुण जेको आहे उहो एवोकाडो मिल्क ऐं एलोवेरा सां तयार थियल आहे, बाक़ी फेस वॉश जी ॻाल्हि कई वञे त फेस वॉश जेको आहे उहो वाइटमिन सी सां तयार थियल आहे। सो एॾा ज़बरदस्त क्वालिटी जा प्रोडक्ट्स आहिनि, तव्हां लाज़मी ट्राई करे ॾिसजो। ऐं ऑल स्किन टाइप जे लाइ आहिनि, हर कोई इस्तेमाल करे सघे थो, चाहे मर्द हज़रात हुजो, ख़वातीन हुजो, ऐं तव्हां टीनेजर्स जे लाइ बि आहिनि जेके भई पंहिंजी स्किन खे सुठो करणु चाहिनि था, पंहिंजी स्किन जा एक्नी ख़तम करणु चाहिनि था, त जंहिंजे चहिरे ते एक्नी काफ़ी सारा अची विया आहिनि, एक्नी जा निशान अची विया आहिनि, या फिर तव्हांजे चहिरे ते रिंकल अची विया आहिनि खोड़ सारा वक्त खां पहिरियां तव्हां ईअं कुराड़ा कुराड़ा नज़र अचो था, त तव्हांजे लाइ ही सभु प्रोडक्ट आहिनि जेके तव्हां आराम सां लॻाए सघो था। ऐं सभ खां बहितरीन ॻाल्हि त जेके टीनेजर्स परेशान आहिनि पंहिंजे चहिरे जे एक्नी खे वठी, यानी कि दाणा तव्हांखे नथा छॾनि, त तव्हांजे लाइ डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब अवेलेबल आहे। ऐं डॉक्टर ट्यूब जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कयो पिया त तव्हांखे हिकड़ी ॻाल्हि ॿुधाईंदी हलां त डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेको आहे ही फुल आयुर्वेदिक फार्मूलो आहे, यानी कि हिन में सभु नेचुरल चीज़ूं एड कयूं अथनि, ऐं जंहिंमें तव्हांजे लाइ बिल्कुलु अहिड़ो प्रोडक्ट आंदो आहे जेको तव्हांजी स्किन खे सफ़ा वीआईपी बणाए छॾींदो, तव्हांजे एक्नी सां फाइट कंदो, तव्हांजे चहिरे ते चाहे एक्नी हुजनि, एक्नी मार्क्स हुजनि।
1: Bangure chulla de bande maturvati nayai
0: बिल्कुल जी। उन खां अलावा ब्लैक पोर्स हुजनि, ब्लैक हेड्स हुजनि, वाइट हेड्स हुजनि, या फिर तव्हांजे चहिरे ते एक्स्ट्रा ऑयल आहे, ही सभु चीज़ूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके तव्हांजी स्किन ते अगरि अची वञनि त तव्हांजी स्किन जेका न ख़राब लॻंदी आहे, तव्हांजी स्किन मज़ो न ॾींदी आहे, त बिल्कुलु तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमालु करे सघो था। ही तव्हां टीनेजर्स लॻाए सघो था, एजिड माण्हू लॻाए सघो था, ऐं लॻाइण जो तरीक़ेकार बिल्कुलु ई आहे त तव्हां राजे टाइम इस्तेमालु कंदा, जिते जिते दाणो आहे, जिते जिते एक्नी आहे, जिते निशान आहे, जेका बि चीज़ तव्हां रिमूव करणु चाहियो था तव्हां उन उन जॻह ते लॻायो, ऐं पोइ तव्हां सुम्ही पओ, उन सुबुह थी तव्हां फेस वॉश कंदा त तव्हांखे सफ़ा वीआईपी रिज़ल्ट मिली चुको हूंदो। ऐं अगरि असां ॻाल्हि कयूं वाइट एश लवली क्रीम जी, त वाइट एश लवली क्रीम जी जेतिरी बि मां तारीफ़ कंदी आहियां न समझो त उहा सफ़ा अधु बि कोन्हे का, छो त वाइट एश लवली क्रीम एॾी ज़बरदस्त क्रीम आहे जेका तव्हां जे लाइ फेयरनेस क्रीम तयार कई वई आहे। मार्केट में तव्हांजे लाइ मतिलबु ही सफ़ा कम हूंदा आहिनि, अगरि तव्हां वाइट एश लवली क्रीम जो इस्तेमालु कयो था हिकु दफ़ा त तव्हांखे इहा शइ ख़बर पइजी वञे थी त वाइट एश लवली क्रीम जेका आहे उहो सफ़ा तव्हांजी स्किन जे मुताबिक़ तयार थियल आहे। सो वाइट एश लवली क्रीम जेके गर्मियुनि में ख़ासि करे माण्हू परेशान हूंदा आहिनि त असां कहिड़ो प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो, गर्मियुनि में तव्हांजे लाइ कोई बि प्रोडक्ट सूट नाहे कंदो तव्हांजी स्किन ते, तव्हां परेशान हूंदा आहियो, या वरी तव्हांखे इहो लॻंदो आहे त सनस्क्रीम कहिड़ो असां पंहिंजे स्किन ते लॻायूं, त तव्हांखे इन टेंशन जी करण जी ज़रूरत नाहे छो त वाइट एश लवली क्रीम जेका तयार कई वई आहे हिन जे अंदरि सनस्क्रीम बि एड कयो अथसि। ऐं सनस्क्रीम एड थियण जो रीज़न इहो आहे त तव्हां मतिलबु अलॻि

प्रोडक्ट्स न लगायो, तव्हां जे लाइ हिकिड़ो प्रोडक्ट तयार कयो आहे जंहिंजे अंदरि तव्हांखे वाइटमिन्स बि मिलनि था, सनस्क्रीन बि मिले थो, ऐं तव्हांजी स्किन जेका उहा ग्लो बि ॾींदी तव्हांखे, ऐं तव्हांजी स्किन खे जेको आहे न प्रोटेक्शन बि मिलंदी। सो तव्हां लाज़मी वाइट एज लवली क्रीम जो इस्तेमालु करे सघो था, हिन में को बि एज लिमिट कोन्हे को, यानि की तव्हां ॿार आहियो, टीनेजर्स आहियो, कुराड़ा आहियो, जवान आहियो, हर कोई इस्तेमालु करे सघे थो। ऐं वाइट एज लवली क्रीम जेका रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन्स सां तयार थियल आहे, 30 वाइटमिन्स कैप्सूल हिन जे अंदरि एड आहिनि, वाइटमिन डी आहे, वाइटमिन सी आहे, ऐं वाइटमिन ई आहे, वाइटमिन बी थ्री आहे, ऐं सनस्क्रीन बि आहे। ही तमामु हिकिड़ो मुकमल प्रोडक्ट आहे जेको तव्हांखे लाज़मी इस्तेमालु करणु घुर्जे। मां पाण बि इस्तेमालु कंदी आहियां, ऐं जेके वर्किंग माण्हू हूंदा आहिनि, जेके कमु कंदा आहिनि, तव्हां या पढ़ो था या पढ़ायो था, कोई ऑफिस में कमु कयो था, कोई बि तव्हां कमु कयो था, त तव्हां जे लाइ वाइट एज लवली क्रीम मतिलबु जेको आहे न तव्हांजी ज़िंदगी में लाज़मी हुजणु घुर्जे। ऐं जॾहिं तव्हां वाइट एज लवली क्रीम लॻाए करे पंहिंजे कम ते वेंदा न, त तव्हांजी जेका ख़ूबसूरती त वधंदी वधंदी, तव्हां शाइन कंदा रहंदा, ऐं तव्हांखे मेकअप जी ज़रूरत बि न पवंदी। त लड़कियां हो लड़के हो सारे ही इस्तेमालु करे सघते हैं, ख़ूबसूरती को बढ़ाते रहिए, और जनाब इस्तेमालु करते रहिए वाइट एज लवली क्रीम। और जनाब यहाँ पर जो है ना, आप हमारे साथ मौजूद है, ज्वाइन करते जा रहे हैं, ये खूबसूरती की बातें तो हम पूरे प्रोग्राम में आप लोगों के साथ करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों को बताएं ये आपके एरिया में अवेलेबल होने चाहिए, तो आपने डायल करना है 03 15 799 0595।

असां लखमीर अबड़ो के हिते सदरा सखर में तव्हांजो शो हले थो या न? बिल्कुल सखर में असांजो प्रोग्राम हले थो, सखर वारा माण्हू बि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं हीउ गानो जेको हलायो आहे सखर वारनि खे डेडिकेट आहे। ठीकु आहे,

पोस्ट खे लाइक एंड शेयर कंदा हलो। अच्छा आदिल, बिल्कुल तव्हांजो गानो हलायूं था, तव्हां लिंक शेयर करे छॾिजो मूंखे। अच्छा ये कुर्बान अली कमरानी हमारे साथ मौजूद है। दादू से वालेकुम अस्सलाम कहते प्यारे भाई को, वासा भाई कहते अदी सिडो तमा जड़ी आरसी कडे भी बेर न मिलंदी, भलो गालाइंदड़ ए सिक ए कुर्ब डींदड़ अदी दाडी भली आई तो अल्लाह यो तमा भलायो बाबा जड़ी तमा के मा एडी सुठी लगंदी आ। तने जो रीजन यो आए त तमा पाण सुठा आयो, जेको मानो भलो ना नने के सब भला लगंदा है। आ हिदायतुल्लाह कहते टॉपिक मेरे, हां ये भी हो सकता है वैसे। अमान अल्लाह चगर भाई हमारे साथ है, वेलकम करते हैं आपको। और नदरी कहती हैं वॉइस तुम्हारी और ये पोस्ट देखो तो लगता है ये लड़की तुम ही हो, डॉक्टर लड़की। हाँ जी, इसीलिए तो हम ये पोस्ट लगाते हैं ताकि आप ये महसूस करें कि ये सिद्रा आपसे बात कर रही है। अच्छा जी, तो किशोर भाई कहते अदी हाँ मुख्य में लगे तो मानू जो है तवा के प्रोग्राम में अचण का मना कर पाया, सो तमाम मानू जो कें भी गाल ते न लग जो तवा ई बिंदास प्रोग्राम में इंदा रहो जी तवा इंदा आयो, तो तई प्रोग्राम तवा जो आए तवा सबनी सुनन भाईरन जो आए। अनवर भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, राजदी तन्हाई में फौजिया जा गीत सच में दिल के उदास करे छडींदा आहे, त न बुधना कयो न बाबा, उदासी जका होंदी ना सुठी ना होंदी। आई हां किशोर भाई तां जो जको कमेंट आ ना वो मां लिखाय छडियो छ तव्हां सभ खां पहिरियां जेको आहे जवाब ॾिनो, ऐं जवाब जेको सभ खां पहिरियां ॾींदो आहे न उहो माण्हू जी नज़र में अची वेंदा इन जे करे, सम्झो था। अच्छा निदड़ी कहती है कि ये सही किया क्योंकि मेरी बेस्टी भी वही रहती है और ये सॉन्ग सूट कर रहा है उसके लिए, चलें फिर ये सखर वालों को गाना डेडिकेट जाता है। और सईदा बुखारी कहती है सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं। कहती है मैडम अल्लाह आपका नसीब अच्छा करे। बहुत शुक्रिया सईदा बुखारी। सईद माण्हू अगर मूंखे अहिड़ी दुआ ॾींदा त बाबा पोइ त अल्लाह कटाईंदो, सो तव्हां अहिड़ियूं दुआऊं ॾींदा कयो ऐं मोहबतूं आहिनि तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया। और ये हमारे साथ मौजूद है फज़ीला सिंधी, वालेकुम अस्सलाम, कहती है हैप्पी वेडनेसडे आफ्टरनून स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान, आप कैसी हैं। मैं ठीक है, कल मैंने आपको कमेंट किए थे लेकिन आप खा गई। हाँ शायद रह गए होंगे। और कहती ओए प्यारी बाबू जमींदार अथस पाण छा आहे, बिल्कुल मां उहा ई ॻाल्हि कंदी आहियां त पाण छा आहे। माण्हू ॾिठो वञे त अॻिले खे अगरि तव्हां कोई बि वैल्यू ॾियो त उन जे पंहिंजे हिसाब सां ॾींदा कयो त हू पाण छा आहे, सम्झो था। बाबो ज़मींदार आहे, चाचो ज़मींदार आहे, उहो छा मतिलब, उहो त उहे आहिनि न। असांजो जेको सोच आहे न सेम सेम आहे ईअं लॻे थो। और तव्हां सलाम ॾिना आहिनि पंहिंजी अम्मी खे, काइनात खे ऐं सभिनी सोणियुनि छोकिरियुनि खे। ओके जी, सभिनी सोणियुनि छोकिरियुनि खे तव्हां इहा बि सलाह ॾियो जेके जेके तव्हां सां गॾु मौजूद आहिनि उन्हनि खे ॿुधायो बाबा त वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल थी विया आहिनि ऐं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगरि तव्हां वठो था त पोइ तव्हां इस्तेमाल कयो, पंहिंजे हिसाब वारो प्रोडक्ट वठो, छो त वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तव्हां जे लाइ हर हिकु माण्हू जे लाइ प्रोडक्ट तयार आहे। यानी की ईअं न आहे त अगरि को चए त मां साबुण हणंदो आहियां, मुंहिंजे लाइ साबुण न आहे, कुझु मां फेस वॉश फेस वॉश कोन्हे, को चए मां नाइट क्रीम हणंदो आहियां ऐं को चए मां फेयरनेस क्रीम हणंदो आहियां, त तव्हां सभिनी जे लाइ हर हिकु तरह जो प्रोडक्ट मौजूदु आहे। बसि तव्हां जेको आहे न पंहिंजे बिल्कुल करीबी जनरल स्टोर ते वञो, उतां मालूमात वठो जीअं तव्हांखे ख़बर पए त किथे मिलनि था प्रोडक्ट, किथे नथा मिलनि, ऐं पोइ नथा मिलनि त तव्हांखे डायल करणो आहे 0595 ध्यानु काॾे हली वियो।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाक फौज दहशतगर्द हमलन बाद अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में कार्रवाई, दहशतगर्द चार थक तबाह, छवी खारजी दहशतगर्द इमारती पिया। स्थित समावारे वफाकी वजीर तारड़ चाहे खारजी दहशतगर्द 9 जून से मूसा दरा में एफसी की चौकी, 2 जून से उत्तर वजीरस्तान में फौजी चौकी, 9 मई से बनू में पुलिस स्टेशन से हमलो कर। दहशतगर्द के हमलन बाद पाक फौज अगवान सरहदी इलाके में गुजे इतला खारजियों खिलाफ कार्रवाई कई, जैमें 26 खारजी दहशतगर्द मारजी व्या। कार्रवाई दौरान खारजी कमांडर्स अलीम खान, खुशहाली अख्तर, मोहम्मद जानी खेल के थाकन के निशानों बढ़ाया वो। दहशतगर्द के मुकम्मल खात्मे तई कार्रवाई जारी रहंद। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत हेठ कौमी इक़्तिसादी काउंसिल जो इजलास जारी। चैनी सूबन जो वा वजीर, आजाद कश्मीर जो वजीर आजम, गिलगित बल्तिस्तान जो वो वजीर इजलास में शरीक। इजलास में नए माली साल के तरकियाती बजट जो मुशावरत, मंजूरी दियण जो इम्कान। बजट जुमे दिहाड़े पेश कई वेंदी।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे का शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन, बुजुर्गन, बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
3: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहां से।
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं।
5: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
6: सुनते रहो GAFM 90.4।
7: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
8: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
8: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
7: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 0331252578 6।
8: जी हाँ, 2315525786।
7: GAFM रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

ओके जी, ओके जी, वापस असी वियो हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां जे पंहिंजे सोणे प्रोग्राम में, जंहिंजो नालो आहे वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। सो हाणे तव्हां बि डन कयो बाबा, तव्हां इस्तेमाल करण वारा आहियो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन जा प्रोडक्ट्स। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल पकी ॻाल्हि आहे।

ओके जी बिल्कुल डन कयो से उन सा गडो गड तवा प्रोग्राम बुधो पया त उन सा गडो गड जको एकड़ी गाल बुधैनी आला तां त हन प्रोग्राम में जके भी तां के प्रोडक्ट बुधाया वने था उन प्रोडक्ट्स के तवा पाजे एरिया में अवेलेबल कराईंदा हलो आई उता वनी आराम सा वठना अचो आई तवा जे सिटी में नथा मिलन केडो सिटी या केडो गोठा त यो भी तां मके बुधाईंदा कयो जे सा के खबर पई त बाबा किथे किथे अन्या तई अवेलेबल कोन थिया है सो असा सगर मौजूद आहे ते सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली आई लारकाणे खा मां अवा सा गड मौजूद आहे ओके जी सो केर केर मुसागर किथां किथां मौजूद आहे मूंखे ॿुधाईंदा वञो पिया तव्हांजा मैसेज आहिनि तव्हांजा कॉमेंट आहिनि

ओके जी, वाह वाह वाह वाह, डाडू भलो गानो तो हाँ बुदो। और ये हमारे साथ मौजूद है, लिखते हैं, अर्ज किया है, जो किस्मत में नहीं उससे गिला नहीं करते, जो किस्मत में नहीं उससे गिला नहीं करते, कुछ लोग तो मिलकर भी मिला नहीं करते। सुना है रोज मिलने से कम होती है मोहब्बत, सुना है रोज मिलने से कम होती है मोहब्बत, ये सोच कर तो हम आपसे मिला नहीं करते। गुलाम शबीर तुनियो भाई हमारे साथ मौजूद है, क्या बात है, वाह वाह वाह वाह, इतनी अच्छी आपने शायरी सुना दी हमें, बहुत शुक्रिया।

ओके जी पोस्ट के लाइक एंड शेयर कंदा हलो ऐं गॾोगॾु जेको आहे मां हाणे तव्हांखे ॿुधाईंदा बाबा त जेको तव्हांखे पहिरियां मूं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जे बारे में ॿुधायो त हाणे तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे बारे में ॿुधाईंदासीं त डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जेके आहिनि तव्हांजी स्किन जे लाइ केतिरा ज़रूरी आहिनि. सो जेके बि सोणा माण्हू असांखे ॿुधनि पिया ऐं सोणा थियणु चाहिनि पिया त बाबा तव्हांजे लाइ डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कयो पिया त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर सां वञी वठी अचो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजी स्किन जे लाइ तमामु घणी ज़रूरी आहे. छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे हिन जे अंदरि माइक्रोबीट फॉर्मुलेशन आहिनि ऐं वाइटामिनी बीट सां तयार कई वई आहे. सो तमामु सिंपल ऐं तमामु जेको आहे न सोणो फार्मूलो आहे जेको तव्हां पंहिंजी स्किन ते लॻाईंदा त तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त तव्हां वाकई शइ लॻायो पिया ऐं अगरि तव्हां इस्तेमालु कयो पिया त तव्हांखे इहो ॿुधाईंदी हलां त तव्हांखे सिर्फ़ ॿ रातिनि जे इस्तेमाल में तव्हांखे रिज़ल्ट मिली वेंदो. सो ॿ रातिनि में रिज़ल्ट एॾो जल्द एॾो बिल्कुलु ऐं रिज़ल्ट जेको आहे न तव्हांखे मिलण खां बाद में तव्हां पंहिंजी स्किन खे जॾहिं ॾिसंदा त तव्हां इहो महसूसु कंदा त तव्हांजी ख़ूबसूरती जेका आहे उहा वधंदी वञे पई ऐं तव्हांजे चहिरे ते जेके निशान आहिनि डार्क सर्कल्स आहिनि या वरी डार्क स्पॉट्स आहिनि या फिर तव्हांजे स्किन ते जेके ब्लैक हेड्स अची वेंदा आहिनि उहे सभु चीज़ूं ख़तम थींदी वेंदियूं ऐं तव्हांजी स्किन ग्लो कंदी ऐं तव्हांजी स्किन ब्यूटिफुल थी वेंदी. सो चाहे तव्हां मर्द हज़रात आहियो चाहे तव्हां ख़वातीन आहियो तव्हां हर कोई इस्तेमालु कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम. छो त जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे जॾहिं तयारु कई वञे पई त इलाही सारे डॉक्टर्स खां पुछा करायो वियो हिन क्रीम खे बिल्कुलु जेको आहे न सुठी हिकिड़ी जेका मोट मिली तॾहिं ई क्रीम तव्हां ताईं पहुचाई वई आहे. जेके माण्हू पंहिंजे स्किन जी वजह सां परेशान हूंदा आहिनि त असां हीउ प्रोडक्ट लॻाए सघूं था या नथा लॻाए सघूं ऐं तव्हां अक्सर कोई बि प्रोडक्ट खणण खां पहिरियां कंफ्यूज़ हूंदा आहियो त जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा त इहा जेका कंफ्यूजन आहे तव्हांजी इहा ख़तम थी वेंदी. छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे न फुल तव्हांजी स्किन जे मुताबिक़ आहे ऐं जंहिंजी स्किन सफ़ा घणी सेंसिटिव आहे न हू बि आराम सां लॻाए सघनि था. अगरि तव्हांजी स्किन जेका सेंसिटिव आहे तव्हां कोई प्रोडक्ट नथा लॻाए सघो त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे बिल्कुलु लॻाए सघो था. तव्हांखे मोकल आहे सही आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे तव्हां राज टाइम लॻाईंदा छो त हीअ हिकु नाइट क्रीम आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन फेस वॉश बि मिले थो. ओके सो डी स्किन फेस वॉश जेको तव्हांखे मिले थो इहो हाइलोरोनिक एसिड सीरम सां तयार थियल आहे ऐं हाइलोरोनिक एसिड सीरम हिन जे अंदरि मौजूदु आहे जेको तव्हांजी स्किन खे डी हाइड्रेट अगरि तव्हांजी स्किन थी वई आहे त हुनखे हाइड्रेट कंदो तव्हांजी स्किन खे क्लीन बणाईंदो तव्हांजी स्किन खे स्मूथ बणाईंदो लविंग बणाईंदो तव्हांजे चहिरे ते जेका ड्राइनेस अची वेंदी आहे न उनखे ख़तम करे छॾींदो. सो डी स्किन फेस वॉश तव्हां लॻाए सघो था पंहिंजी स्किन ते अगरि स्किन सेंसिटिव आहे नॉर्मल आहे कहिड़ी बि टाइप जी आहे तव्हां बिल्कुलु लॻायो का बि टेंशन कोन्हे का छो त डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जेके आहिनि तव्हांजी स्किन जे मुताबिक़ तयार थियल आहिनि ऐं तव्हांखे ॾींदा अहिड़ो रिज़ल्ट जेको तव्हां हमेशह चाहींदा आहियो. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे एरिया में अवेलेबल आहे नाहे त पोइ बाबा डायल कयो 03-15-799-0595 ऐं गॾोगॾु तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे कीअं इस्तेमालु कंदा डी स्किन फेस वॉश सां गॾु इस्तेमालु कंदा डी स्किन फेस वॉश जेको तव्हां ॾींहं में 3-4 दफ़ा इस्तेमालु करे सघो था ऐं राज टाइम पंहिंजो फेस वॉश कयो डी स्किन फेस वॉश सां उन खां पोइ तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम पंहिंजे चहिरे ते अप्लाई कयो ऐं पोइ तव्हां ॾिसो त तव्हांजे चहिरे ते केॾी ख़ूबसूरत जेको आहे न उहा ग्लो अची वञे थी तव्हांजी स्किन केॾी ख़ूबसूरत थींदी वेंदी. सो तव्हां लॻाईंदा तॾहिं त ख़बर पवंदी न सो लॻाए ॾिसो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो. उन खां अलावा जेको आहे फेसबुक वारा माण्हू पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कयो बाबा मिटनि माइटनि खे ॿुधायो दोस्तनि शेयर कयो जेके जेके मतिलबु पंहिंजी ख़ूबसूरती जी तलाश में आहिनि उन्हनि खे ख़ूबसूरती नथी मिले त हाणे तव्हांजी ख़ूबसूरती तव्हांजे पंहिंजे हथ में अथव. छो त तव्हां मार्केट वेंदा ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज़ करे ईंदा डी स्किन फेस वॉश परचेज़ करे ईंदा त अची वञे तव्हांजी ख़ूबसूरती तव्हांजे हथ में पोइ तव्हां इस्तेमालु कंदा ऐं सुहिणा थी वेंदा. ऐं हा जो मूं तव्हांखां सवाल पुछियो आहे त मूंखे ॿुधायो उहो कहिड़ो फल आहे जेको पचंदो ई न आहे. ओके सो इन सवाल जो जेको आहे न तव्हां मूंखे जवाब ॾींदा वञो था ऐं तव्हांजा प्यारा प्यारा फीडबैक आहिनि जेके मूं ताईं पहुचंदा वञनि था. तव्हांजा फीडबैक पढ़ंदासीं बिल्कुलु तव्हां सां कुर्बन जूं कचहरियूं हलनि पियूं पूरे पूरे 3 बजे ताईं हलंदियूं रहंदियूं ऐं ॾिठो वञे त अच्छा हाँ सही है सही है. ओके जी सो यहाँ पर हमारे साथ सोनी भी मौजूद है और सोनी कहती हैं आप ही जान में भी आ गई आपके साथ साथ मैं भी फेसबुक पे आती वहाँ आकर आपका शो सुनती आप ही अगर वहाँ हाँ ये बात तो है बिल्कुल चलें यहाँ पैनल पर ही ठीक है और ऐसे ही आप हमें मैसेज कर दिया करें और साथ साथ जो है आप इस्तेमाल भी करती रहा करें डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश क्योंकि जनाब अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा. तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. और अनवर भाई कहते हैं प्रोग्राम अभी आपका सुनना है स्टार्ट किया अनवर भाई आपका बहुत शुक्रिया. और जी लखमीर अबड़ो कहते हैं
सखर में शो हले पयो त पंहिंजे प्यारनि ॾे सलाम मोकिलणा हुआ सभ खां पहिरियां सलाम मुंहिंजे बाबा साईं खे उन खां पोइ मुंहिंजा भाइर आहिनि अमीर अली तनवीर अली अबड़ो ओकरी तव्हांजा सलाम तव्हांजे प्यारनि ताईं पहुची विया अगरि हू प्रोग्राम ॿुधंदा हूंदा त बिल्कुलु हुननि ॿुधी वरितो हूंदो और निदड़ी कहती है कि और मैं बताती हूं ना भाई हाँ आप ही बता दिया करें बाकी कोई बताता है तो फिर मजा नहीं आता करीम बख्श शर्म अरसद माजूद वालेकुम अस्सलाम और कहते हैं सदाकत कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं समझ नहीं आई जरा बात अच्छा अनवर भाई तुम्हारा टॉपिक ते गालायो आहे टॉपिक ठीक आ समझी वयासी हते एकड़ो गानो हलाईंदासी जेको आहे ममताज मौलाई साहब जो ममताज मौलाई जे गाने जी फरमाइश खोड़ सर मानू मुखे कन पे आजे प्रोग्राम में सोही वारो गानो

ओके जनाब, तो मैं कहाँ खो गई, मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रही थी। अच्छा तो अच्छा यह गाल ना, अगर मानू किरंदो हड्डा टूटंदा तरी तो मानू सिखंदो ना। अच्छा वफा मुमताज अली खोसो हमें सुन रहे हैं और आपके साथ मौजूद ही वफा मुमताज अली खोसो भाई कलंदर बख्श खोसो, वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम तमाम जबरदस्त है, सो मोहब्बतूं प्यारे भावन जो। और उनखां अलावा वासु भाई ठीक है

ओके जी, अब्दुल जब्बार मीराली हमारे साथ कहते हैं हाय आदि सदरा, आप कैसी हैं? हम आपका प्रोग्राम रोजाना सुनते हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और कंपेयरिंग भी मैं अशरफ अली मीराली एंड थैंक्स फॉर प्लेइंग शमन अली मीराली सॉन्ग। शमन का गाना तो वैसे तकरीबन हमारे प्रोग्राम में चलते रहते हैं, सो बहुत शुक्रिया भाई आप हमारे साथ मौजूद हैं। और नखा अलावा किशोर भाई कहते होश और खामोशी से काम ले प्यारे, हम अभी सबर में है कब्र में नहीं। ये मैडम चलो जी बिस्मिल्लाह, टाइम थियो आ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था उनखा पे जल्दी वापसी तवानी मोटी जुदो समाकारी न मजोते बैठा हो जो मां ओही वनी ओही मोटान थी। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। प्रोग्राम इज ऑन आवर व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स एंड जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी एंड चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म एंड दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

वाकई बस ही देना तो वाले ना ओके तो वापसी आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावत से आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना बताए ना ओगरी तो यहाँ पर आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने की बातें होती हैं प्रोग्राम में आपका हमारा साथ डेली बेसिस पर होता है जुम्मे को बचोड़कर एक बजे से लेकर तीन बजे तक मैं आप लोगों का रोजाना अगर सर खाती हूँ समझ रहे हैं तो आज प्रोग्राम के लास्ट लेग में आ चुके हैं जनाब जिन लोगों ने अभी अभी सुना स्टार्ट

फिर स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है सबको वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। कोई मुझसा कहा

जी ओ क्रिस बाबा कोई तुस्सा कहा, बहुत ही प्यारा गाना पाकिस्तानी मूवी का जो है ना वो टाइटल सॉन्ग था। और इसके साथ साथ गाना आपको यकीनन अच्छा लगा होगा, एक और गाना भी हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि हम सुनते रहेंगे। बिलाल सईद की आवाज होने वाली है ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल लाइक अ शाइनिंग स्टार। ओ ऐसे गाता है अजब ना खा इलावा जी को। तो तव जो मैसेजेस आया बिल्कुल पढ़ू था, पर तव्हांखे थोड़ो ॿुधाईंदमि, सफ़ा थोरो ॿुधाईंदमि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां अञा ताईं कोन पिया लॻायो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे इस्तेमालु कयो, छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाईंदी। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तयारु कई वई आहे वाइटमिन ई बीड्स माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन सां। सो अगरि तव्हां बि लॻाइणु चाहियो था त बिल्कुलु तव्हां लॻाए सघो था। ऑल स्किन टाइप जे लाइ बिल्कुल ये सां मुंहिंजी तरफ़ां तव्हां सभु लॻायो, ऑल स्किन टाइप जे लाइ आहे। ऐं सभ खां भली ॻाल्हि लाइट वेटेड फार्मुलो आहे, तव्हां राजे टाइम कोई बि नाइट क्रीम लॻाइणु चाहियो था जेका सफ़ा लाइट वेटेड हुजे ऐं तव्हांखे रिज़ल्ट बि ॾे, तव्हांजी स्किन ग्लो बि बणाए तव्हांजी स्किन खे, त बाबा तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे इस्तेमालु करे सघो था। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे तव्हां इस्तेमालु कंदा त ॿ रातियूं अगरि इस्तेमालु कंदा त ॿिनि रातियुनि खां पोइ तव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदी। ऐं उन खां अलावा जेको आहे न त डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि इस्तेमालु करणो अथव, सम्झो था। सो इहे ॿई चीज़ूं गॾु लॻायो ऐं सोणा सोणा थी वञो। ऐं नथो मिले अगरि तव्हांजे एरिया में त डायल कयो 03 15 799 0595।

ओ जी मैसेज जल्दी से पढ़ लेते हैं कहीं आपके मैसेजेस रह ना जाए. ये हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम बारी सिद्रा. गुड आफ्टरनून एंड हाउ आर यू. शो आपका बहुत अच्छा है. मीरपुर खास से उमेद अली लाशारी हमारे साथ है. सलाम चौहान कुमार अदील अबड़ो खालिद जुनेजो और खालिक इकबाल लाशारी. प्लीज प्ले शमन. शमन तो आ चुके जी. आपने शमन का गाना सुना होगा. और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है. चाचा खालिद कहाँ है, नजर नहीं आ रहे आजकल. और जन्नत मुझे सॉन्ग सुनाए लार्ज ड्रामे का ओएसटी है. लार्ज ड्रामे का चले मैं देखूंगी. अगर मिल गया तो लगाती हूँ आपके लिए, नहीं तो कल लगा लूंगी. ठीक है. और लियाकत अली खाकरानी हमारे साथ ही लाड़काना से कहते प्यारी बहना सिद्रा अस्सलाम वालेकुम. प्यारा भाव वालेकुम अस्सलाम. हमें कोई भी मजे का गाना सुनाए तो आपकी मेहरबानी होगी. जी भाई मेरे प्रोग्राम में मजे के गाने चलते हैं, आप सुने इंजॉय करें. और ये बाची सिद्रा हमारे पास बहुत गर्मी है. आपके साइड तो हमारी ज्यादा, आपके साइड तो हमारे से भी ज्यादा गर्मी होती है. फिर आप लोग कैसे भाई सर्वाइव कर लेते हैं? कोई बड़ी बात ही नहीं. हाँ भाई 52,000 डिग्री टेम्परेचर हलो बने ॾिसो त गर्मी लगे तो ॾाढी पढ़ी लिखी आहे. और उमेद अली लाशारी भाई हमारे साथ तव्हां सलाम ॾिना आहिनि. अज़ीज़ सोलंगी गफूर और आकिब लाशारी आर जे गुलनाज आर जे हारून बलोच अनवर और मी. सो थैंक यू. अच्छा ये लिखते हैं बाजी. चले इमरान भाई इंजॉय करे और ज्यादा मुख्य लगे तो. और मानू अगर तां वेगो गाड़ी वठी करे आऊं, मतलब वठी रोड ते निकरंदा ना मानू पोया तां के कंदा सड ओ जमींदार. जमींदार ना बल्कि तां के सदा ओ मजदूर मुख्य लगे तो. छो तो हाने जे कोने जो ट्रेंड हलन स्टार्ट थियो आ ना, अगर कोई भी गाड़ी कडी हलंदो ना वेगो तो मानू नन के बिल्कुल रोड ते ही चदा मजदूर ओ मजदूर. सफ़ा ओरा जो ना माइनस वने पे अजकल तो. सो कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं. विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो हमारे साथ है. भाई का बहुत शुक्रिया. इरम कहती हैं दिलबर दोस्त मां ठीक आया तां बता सोनी की आयो. और सोनी कहती आप ही प्लीज जीशान की आवाज में ये वाला गाना तो लगाएं. चलिए टाइम बच गया तो लगा लेते हैं. बहुत शुक्रिया सोनी आप हमारे साथ है. सुबल अली खास के लिए हमारे साथ है. भाई आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ साथ है.

असां ॾाढो भलो गानो आहे डेडिकेशन मूंखे वञे पई दर्द दिल जी तरफ़ खां सो थैंक यू सो मच बिल्कुल सी प्रोग्राम आहे वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो तव्हां ॿुधो पिया वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जे तावन सां सो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी लगायो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी लगायो ऐं पाण खे सफ़ा चमकाए छॾियो अच्छा निदड़ी कहती है मीम्स के बिना अपना गुजारा नहीं आई एम राइट ना यस बाबा मीमर्स का पूछो तो मीम्स सुनने के लिए कितना इम्पोर्टेंट आई असा भी उन्हें अच्छा मोहम्मद अली खोसो हमारे साथ मौजूद हैं भाईजान वालेकुम अस्सलाम वफा ममताज अली खोसो भाई चाहता चो गोठ रईस गुलशन खोसो से वफा ममताज अली खोसो कलंदर बख्श खोसो वालेकुम अस्सलाम शो तमा के वणे पयो सो मोहब्बत प्यारे भाव

पे दर्द दिल तुम्हारा टॉपिक जो जवाब दिनो है ठीक है मोहम्मद अली खोसो तुम्हारा के सॉन्ग्स वर्णन पर प्रोग्राम चाह सो थैंक यू अच्छा स्मार्ट स्मार्टू गोपांग हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम कहते मैं भी आ गया चलें आप हमारे साथ मौजूद है कंपनी आप हमारे साथ है नहीं तो वहाँ गाने की फरमाइश कही मास्टर मंजू जो गानो आई हले पो बुधो इनके

जी क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना हमने एंजॉय किया। और हमारे साथ जी एक और गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है जो होने वाला है बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल। हाँ पहुँचो मिलन जरूरी है।

अच्छा किशोर भाई क्या कहते हैं, बीवी शोहर से बोली कि आज मेरा गला बहुत दुख रहा है, शोहर ने कहा दबा दूं, बीवी बोली क्या कहा, शोहर ने कहा दबा दूं दबा दबा। बिल्कुल वो वैसे ही जैसे शोहर ने बीवी से कहा कि मोटी रोटी दे, तो बीवी ने कहा क्या, तो उसने कहा मोटी रोटी दे, मतलब मोटी रोटी। ये भी आजकल बड़े चल रहे हैं, और आजकल व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी चल रहे हैं, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी चल रहे हैं, तो जो जो चीजें चलती हैं तो आप जरा उनके ऊपर फोकस किया करें, ठीक है। अली अकबर ब्रो ही बात आज मोहब्बत वाइन प्रोग्राम विद उपया हिदायतुल्लाह, ठीक है जी, ठीक है, गर्मी तो वाकई बहुत ज्यादा है। अच्छा आदिल के सदरा लोग कभी भी खुश नहीं होंगे भाई, तपो केर तो मान उनके खुश करण चाहे। बुधायो मके यो केड़ा।

पाण खुश रहो ऐं बस खुश रहो। अनवर भाई ते अवां बि सिस दिलनि जा मालिक आहियो। सोचम पेज ते ही सॉन्ग जी फरमाइश कयां हर वक़्त थोरो, पर अवां ही सॉन्ग हलाए छॾियो। अच्छा, हिन गाने जी फरमाइश चलो ॿुधो बाबा पोइ। ऐं गानो तव्हांखे ॿुधणु ॾियूं था, हाणे तव्हां खां इजाज़त वठूं था, ठीकु आहे? ओके, लियाकत अली खाखरानी लारकाना से किथे वाकी अदी, थैंक यू सो मच प्यारा भातान जो मोहबतूं आहे। ईअं खुश रहो, हमेशह असां सां गॾु मौजूद रहो, ऐं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स ईंदी स्किन जो जेको आहे न इस्तेमाल कंदा रहो। ऐं तव्हांजे एरिया में मिलनि था कोन, इहो मूंखे लाज़मी ॿुधाईंदा कयो। ऐं नथा मिलनि त पोइ तव्हां डायल कयो 03-15-799-0595। ईअं न त ही नंबर मां तव्हांखे ॾिसो प्रोग्राम में केतिरा दफ़ा ॿुधाईंदी आहियां, पोइ बि तव्हां अची कॉल ते चवंदा बाजी असांजे ॻोठ में त कोन थो मिलेव। अरे बाबा, हिन नंबर ते राबितो कंदो त मिली वेंदो न, हेतिरी ॻाल्हि आहे जेका तव्हांखे समुझ में नथी अचे। सो नंबर ते लाज़मी डायल कजो ऐं हुननि सां ॻाल्हायो, हुननि खे चओ त बाबा फलाणे ॻोठ में असां रहंदा आहियूं, असांजे एरिया में नथो मिले ही प्रोडक्ट जेको ॿुधाए पई भाजी सिदरा, सो हू तव्हांजे ॻोठ में अवेलेबल कराए छॾींदा। ऐं जेको अॼु सवाल पुछो हुन जो जवाब आहे सबर का फल, समझो था, जिन सबर का फल जवाब ॾिनो हुन सभिनी जो सही आहे, बाक़ी जिन कोकोनट लाइ छा चयो हुननि जो ग़लति आहे, सही आहे। असां पंहिंजो हेॾो सारो ख़्यालु रखंदा। ऐं किथे का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां पई, जंहिंजा फीडबैक रही विया आहिनि, जंहिंजा गाना रहिजी विया आहिनि, सभिनी खां माज़रत कयूं था। वरी इनशाला तव्हां सां सुभाणे मुलाक़ात आहे मुंहिंजी 1 बजे खां 3 बजे ताईं। सो मोकिलाणी नाहे बाबू, सलामत, सा सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: ओकन दा
1: 0331252586।
0: जी हाँ, बुड़ी 331 5575786।
1: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

चूड़ियाँ चढ़ाने के बाद इन पर पॉलीथीन बैग चढ़ाने से वो काफी अरसे तक काली नहीं पड़ती, उनकी सेफ्टी रहती है और हर सेट को दूसरे सेट से बचाने के लिए गत्ते या फोम की पतली तह लगाकर डब्बे में रखे ताकि वो आपस में ना टकराए। और चूड़ियों को ऐसे कवर में भी रखा जा सकता है जो जिप टिच बटन या चिकन पट्टी से खुलते हों ताकि हिफाजत के साथ निकालने और रखने में आसानी हो। कपड़े और हल्के फोम के छोटे बटुए बनाकर उनमें अलहदा अलहदा कड़े रखें ताकि उनके नग ना निकलें और रगड़ से भी महफूज रखें। तो जनाब आई होप कि ये वाली इन्फो जो है वो आपकी रूटीन लाइफ में यकीनन आपके काम आएगी। और आपको बताते चले, आइंदा बजट में इम्पोर्टेड मेकअप, लिपस्टिक, परफ्यूम्स और ब्रांडेड कपड़े सस्ते होने का इम्कान है। सामान पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी या रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी आ सकती है। तो खवातीन के लिए ये फैशन इंडस्ट्री के हवाले से बड़ी खुशखबरी है। ये हुकूमत ने आइंदा बजट में इम्पोर्टेड मेकअप, बनाव सिंगार के दीगर सामान पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी का फैसला किया है। आर

0: तो
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: पाकिस्तान आर्मी जो हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद में जो हादसे का शिकार, हेलीकॉप्टर में समूरा एहलकार शहीद, आईएसपीआर चवायत MI-17 हेलीकॉप्टर फनी खराबी सबब हादसे का शिकार थे। हादसे के नतीजे में हेलीकॉप्टर में सवार समूरा एहलकार शहीद थे। हादसे का कारण मालूम करने लाए जांच कई पे वने। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास खत्म, वफाक ए सूबन विच में अहम तरक्याती मनसूबन के इतफाक। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल अहम मुआशी हदफन की मंजूरी दई छी। मुल्क की चटदार तरक्की गडियल हिकमत अमल जुड़ने के इतफाक। कौमी तरक्याती प्रोग्राम तहत इंफ्रास्ट्रक्चर तवनाई ए समाजी शोबन के तरजीह देने के इतफाक। वसीलन के मुनसफानी विरच करण के इतफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुल्की मैशियत वन चैलेंजेस के मुंह डो। टीम वर्क तौर पाकिस्तान के मफाद में फैसला कया। मैक्रो सतह से मुल्की मैशियत मुस्तहकम थी है। मुश्किल बावजूद आईएमएफ प्रोग्राम से अमल कर रहा हूं। खिते सूरतयाल सबब तेल जो कीमतों भी आसमान से पौतल हैं। मुश्किल सूरतयाल में आवाम के रिलीफ फराहम किया वो। हुकुमरान इदार विच में इंदड़ माली साल लाए तरक्याती फंड वधायण ते इतफाक। किसाक दार सदारत हेठ को टेक्निकल कमेटी जो कार्यूं कामयाब। सूबन पारा नए माली साल के वादू टैक्स आमदनी मरकज के डेण करण ते इतफाक। जरन चवणा है NFC तहत कौमी वसीलन की विरासत वाले फार्मूले में का भी तब्दीली न कई वेंदी। सूबा हलंदड़ माली साल के आमदनी के हिस्से में वादू रकम वफाक से डींदा। पानी के वसीलन के वन मनसूबन के जल्द मुकम करण लाए सूबा मरकज के 1200 अरब डींदा। मरकज मनसूबन के मुकम्मल थियण का पोए सूबन का वरतल वादू फंड वापस कंदो। पंजाब 620 अरब, सिंध 310 अरब, KP 180 अरब, बलूचिस्तान 85 अरब वफाक के डींदा।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: ताडो सुठो
3: जीए FM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
5: सुनते रहो जीए FM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: की जानिब हम करेंगे मूव। हमने आपसे पूछा ओलंपिक्स गेम्स कितने साल बाद होते हैं, सवाल का जवाब जानने के लिए आपकी कॉल श्यामले प्रोग्राम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम
0: वालेकुम। अस्सलाम जनाब, कौन बात कर रहा है? खुश आमदीद कहेंगे आपको, क्या हाल है आपके? ठीक है
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: या आई एम गुड। ओलंपिक्स गेम्स कितने साल बाद होते हैं, आपको मालूम है इस बारे में? सवाल का जवाब मालूम है आपको?
1: बताइए।
0: ओलंपिक्स गेम्स कितने साल बाद होते हैं?
1: चार पाँच साल।
0: एक बताएं, चार या पाँच?
1: चार।
0: चलें, राइट आंसर है आपका, तुक्का दुरुस्त हो गया, बहुत शुक्रिया।
1: ये हमारे दोस्त हैं
0: जी,
1: हमें
0: ये कौन से सिंगर का है?
1: ये मुमताज मौलाई का कलाम है, इंतजार व मौत बराबर अल्लाह कदा यार।
0: मैं तो मुमताज मौलाई को चला चुकी हूँ, आपने प्रोग्राम शायद शुरू से नहीं सुना। चलें, बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट प्रोग्राम में सुनाएंगे आप। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, और जनाब हमारा ब्रेक अब करीब है, तो आई थिंक मजीद सवाल पूछना बेकार है क्योंकि फिर ब्रेक की जानिब जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं छोटे से तजीरी वक्फे की जानिब जाती हूँ, इस ब्रेक के बाद आपको अगेन ज्वाइन करते हैं।

0: हमारे पास
1: भरोसा भी रफ्तार। बैंक रिश्ता भरोसे का
0: हर कन गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो हल्का कपड़ा पायो मथो ढके रखो उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो वधिक पानी पियो महफूज रहो ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश किया
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का।
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
6: मातरी के हो तो

राजा जी अक्सर कहती हैं गुल 4 साल बाद होते हैं ओलंपिक गेम्स और वर्ल्ड कप 5 साल बाद होता है। चले जी दुरुस्त आंसर है अक्सर, आपका बहुत शुक्रिया। अक्सर कहती हैं गुल वेरी नाइस पोएट्री। ओके थैंक यू अक्सर, बहुत शुक्रिया। एक मशवरा है आप सबके लिए, जिंदगी का एक उसूल बना लें, लोगों को उतनी अहमियत ना दें जितनी आप देते हैं, उतनी अहमियत दें जितने की काबिल वो हैं। हम मैंने बहुत चीजें नोट की है, पर्सनली एक चीज नोट की है, हम लोगों को अपनी जिंदगी में इस कदर हावी किए हुए हैं, हमें रब से ज्यादा लोगों का खौफ हम पे सवार रहता है हर वक्त। ऐसा हो गया तो लोग क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे, और इस चीज ने हमें बहुत से नुकसानों से दोचार किया हुआ है। हम अपने लिए तो जीते ही नहीं है, हमारी तो आती जाती सांसें लोगों के लिए। तो लोगों को इतनी अहमियत ना दें जितनी हमने दी हुई है कि हमें अपनी जात तक नजर नहीं आती। हमारा जीना मरना लोगों के लिए है, हमारा हर काम लोगों के लिए है। लोगों को वहां रखें जहां उनका होना ना होना आपके लिए बराबर हो। हम लोगों के लिए अल्लाह को भी नाराज करते हैं, अपनी आखिरत भी। और जानते हैं आप लोग क्या करते हैं, लोग अपने मूड के हिसाब से चलते हैं, ठोक मोर मारकर चले जाते हैं, और एट द एंड हमें सहारा कौन देता है, अल्लाह ताला देते हैं। जितनी अहमियत आप लोगों को देते हैं ना, सेम वही अगर आप अल्लाह को देंगे तो देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। लोगों का क्या है, आते और चले जाते, इंसान इंसान के लिए आज ना ही मुंह के बल गिरा देते हैं लोग। तो मैं आपको मशवरा यही दूंगी कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को अपनी पहली आखिरी दरमियानी तरजीह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को बनाइए। अपने आप को बावर कराएं, खुद को याद करवाया करें कि मैं अल्लाह की हूँ, मेरी जिंदगी अल्लाह की है, मेरी जिंदगी का हर फैसला अल्लाह का है। आपके लिए जिंदगी की हकीकत कबूल करना आसान हो जाएगा। जब इंसान कुछ बनाता है अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं रखता। अल्लाह पाक जो हर काम में परफेक्ट है, कैसे हो सकता है वो आपकी जिंदगी को परफेक्ट प्लान ना करें। हम अल्लाह के हैं, हमारी जिंदगियों का हर फैसला अल्लाह का है, हमने अल्लाह की तरफ जाना है। यहाँ की हर चीज अल्लाह की दी हुई है, और जब हर एक चीज अल्लाह की है उसी के पास जानी है, फिर उसके जाने का दुख कैसा। छोड़ दे लोगों का सोग मनाना, इस बात की खुशी मनाएं कि आप अल्लाह के हैं। आज इसके लिए इंसान मर मिटने को तैयार है, जिसके एक हुक्म पे कायनात का जर्रा जर्रा जमीन से मिट सकता है। तो आप खुद को बावर कराया करें कि आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हैं। और मैं आपको यही कहूंगी, फिक्र की बात ये नहीं आपने पूरे दिन में कम खाया या कम कमाया या आपके पास वसाइल नहीं है। अगर आपको फिक्र होनी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ इस बात की फिक्र हो कि सूरज तुलू होकर गरूब हो गया, आपने अल्लाह के आगे सजदा भी नहीं किया। फिक्र तो ये आप पर दिन तमाम हो जाए, आप कुरान पाक को खोल कर ना पढ़ सके। फिक्र की बात तो ये आप पर सुबह से शाम हो जाए, आपकी जबान इस्तग़फार से महरूम रहे। यकीन जानिए जिन्हें ये फिक्रें लगती है ना, वो फिर दुनिया की हर फिक्र से आजाद हो जाया करते हैं, और रब उन्हें दोनों जहां में सुरखुरू कर देते हैं। मेरी दुआ है आपका शुमार रब के पसंदीदा बंदों में से हो। जाते जाते प्यारी सी शायरी आप सबके लिए, वो जज्बों की तिजारत थी ये दिल कुछ और समझा था, उसे हंसने की आदत थी ये दिल कुछ और समझा था, मुझे उसने कहा आओ नई दुनिया बसाते हैं, उसे सूझी शरारत थी ये दिल कुछ और समझा था। हमेशा उसकी आंखों में धनक से रंग होते थे, ये उसकी आम हालत थी ये दिल कुछ और समझा था। वो मेरे पास बैठा देर तक गजलें मेरी सुनता, उसे खुद से मोहब्बत थी ये दिल कुछ और समझा था। मेरे कंधे पे सर रख के कहीं पे खो गया था वो, ये एक वक्ती इनायत थी ये दिल कुछ और समझा था। वो जज्बों की तिजारत थी ये दिल कुछ और समझा था, उसे हंसने की आदत थी ये दिल कुछ और समझा था। और ऐसी कैफियत तभी होती है जब हम अंधाधुन इंसानों के पीछे दौड़ रहे होते हैं। अपने दिलो दिमाग की हिफाजत करें, वो जो रब है वही सब है। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी ही जल्दी आपकी जिंदगी संवर जाएगी। रब आप पे हमेशा मेहरबान रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुभ 8 बजे आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिससे मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट, इजी एक्सेसिबिलिटी। मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट पास अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हुकुमरान इतिहाद विच में ईंदड़ माली साल लाइ तरक़ियाती फंड वधाइण ते इतफ़ाक़ के साकदार जी सदारत हेठि टेक्निकल कमेटी जूं ॻाल्हियूं कामयाब। सूमर पारां नए माली साल जी वाधू टैक्स आमदनी मर्कज़ खे ॾियण ते इतफ़ाक़। ज़रियनि जो चवण आहे त NFC तहत क़ौमी वसीलनि जी विरासत वारे फार्मूले में का बि तब्दीली न कई वेंदी। सूबा हलंदड़ माली साल जी आमदनी जे हिसे मां वाधू रक़म वफ़ाक़ खे ॾींदा। पाणी जे वसीलनि जे वॾनि मनसूबनि खे जल्द मुकमल करण लाइ सूबा मर्कज़ खे 1200 अरब ॾींदा। मर्कज़ मनसूबनि जी मुकमल थियण खां पोइ सूबनि खां वरितल वाधू फंड वापसि कंदो। पंजाब 620 अरब, सिंध 310 अरब, खैबर पख़्तूनख्वा 180 अरब ऐं बलोचिस्तान 85 अरब वफ़ाक़ खे ॾींदो।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिससे मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच अड़कणो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे 14 मई खां पोइ थियल समूरनि इम्तिहाननि टेस्टनि ऐं इंटरव्यूज़ जा नतीजा रोकण जो हुकुम ॾेई छॾियो। 14 मई 2026 ते जारी थियल नोटिफिकेशन बि मुअतल। अदालत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन जी मुक़ररी ऐं भर्तियुनि बाबति कानूनी तरीक़ेकार ते बि सवाल उथारे छॾिया। सिंध हाई कोर्ट जी रुकनी बेंच सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बाबति आईनी दरख़्वास्त लिखित में ऑर्डर जारी कंदी। 14 मई खां पोइ थियल इम्तिहाननि टेस्टनि ऐं इंटरव्यूज़ जा समूरा नतीजा अलतवा हेठि रखण जो हुकुम ॾेई छॾियो। अदालत हुकुम ॾिनो त इदारे जा रुगो रोज़मर्रा जा मामला हलाया वेंदा, कंहिं बि इम्तिहान टेस्ट या इंटरव्यू जे नतीजनि जी मंज़ूरी या ऐलान न करे सघिबो।

0: डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबी डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ जीए FM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए FM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
2: जी हा, 2315525786।
1: जीए FM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पुलन ए बिजली घर के निशानो बढ़ाने ते गौर शुरू कर छो। अमरीकी खबरू इदारे फॉक्स न्यूज मूजिब ईरान से मुआदे में देर सबब सदर डोनाल्ड ट्रंप कें भी वक्त ईरान के पुलन ए बिजली घर के निशानो बढ़ाने जो हुक्म दे सके तो। सदर ट्रंप पैं बयान में चाह है ईरान गाल में देर कर छी हाँ तेहरान के कीमत अदा करनी पवी। ईरानी फौज तबाह थी चुकी है। ईरानी बहरिया ए फिजाइया जो नालो ए निशान भी ना रो। ईरान रुगो गालियों करे तो अमली कदम नथो खणे। विचो भर जो यो गुंडो हाँ खत्म थी चुको है। तेहरान अड़े मुआदे ते गालन में देर करे छी जो संदन लाए फायदेमंद साबित थी पे सग्यो।

बम हमलनि या जंग सां ईरानी क़ौम खे झुकाए नथो सघिजे, सफ़ारतकारीअ खां पोइ हिते नायूं हटिया, पर जंग जो जवाब जंग सां ॾींदासीं। ईरानी सदर जो ट्रंप जे धमकियुनि ते सख़्त रद अमल। मसूद पेशकियान जो चवण हो त गज़ा एतिरो नंढो आहे, अॼु ताईं हुन खे शिकस्त नाहियो ॾेई सघिया। ईरान त एॾी वॾी क़ौम आहे, हुन खे शिकस्त कीअं ॾींदा?

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: yeah!

0: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GH4।

0: तरक़ियाती प्लान में 929 अरब रुपयनि जी कटौती करे छॾी। 126 अरब रुपयनि जी कटौतीअ खां पोइ वफ़ाक़ी तरक़ियाती बजेट घटिजी 1000 अरब रुपया थी वई आहे। सूबाई तरक़ियाती प्लान में बि 800 अरब रुपयनि जी घटिताई। 557 अरब रुपयनि जी कटौतीअ खां पोइ पंजाब जी तरक़ियाती बजेट घटिजी 749 अरब रुपया थी वई। सिंध जे तरक़ियाती प्लान मां 137 अरब रुपया काटा। सूबे जी तरक़ियाती बजेट 706 अरब रुपया थी वई। खैबर पख्तूनख्वा जी तरक़ियाती बजेट 109 अरब रुपया घटिताई खां पोइ 455 अरब रुपया मुख़्तस। बलोचिस्तान जी तरक़ियाती बजेट 308 रुपया बरक़रार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत हेठि क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल जे इजलास में अहम मुआशी हदफनि जी बि मंज़ूरी ॾिनी वई। वसीलनि जी मुनसफ़ाणी विर्छ करण ते बेतफ़ाक़। वज़ीर आज़म जो चवण हो त मुश्किलातुनि बावजूद IMF प्रोग्राम ते अमल करे रहिया आहियूं। खिते जी मौजूदा सूरतहाल सबबि तेल जूं क़ीमतूं बि आसमान ते पहुतल आहिनि। मुश्किल हालतुनि में बि अवाम खे रिलीफ ॾींदासीं।
1: हुकमरान इतिहाद विच में ईंदड़ माली साल लाइ तरक़ियाती फंड वधाइण ते इतफ़ाक़। इसहाक डार जी सदारत हेठि टेक्निकल कमेटी जूं ॻाल्हियूं कामयाब। सूबनि पारां नई माली साल जी वाधू टैक्स आमदनी मर्कज़ खे ॾियण करण ते इतफ़ाक़। ज़रियनि जो चवण आहे त NFC तहत क़ौमी वसीलनि जी विरासत वारे फार्मूले में का बि तब्दीली न कई वेंदी। सूबा हलंदड़ माली साल जे आमदनीअ जे हिसे मां वाधू रक़म वफ़ाक़ खे ॾींदा। पाणे जे वसीलनि जे वॾनि मनसूबनि खे जल्द मुकमल करण लाइ सूबा मर्कज़ खे 1200 अरब ॾींदा। मर्कज़ मनसूबनि जे मुकमल थियण खां वाधू फंड वापसि कंदो। पंजाब 620 अरब, सिंध 310 अरब, KP 180 अरब ऐं बलोचिस्तान 85 अरब वफ़ाक़ खे ॾींदो।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज. मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
3: सुनते रहो GFM 90.4.

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: हाय हाय हाय।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।